की बात को, और उसने कहा कि योर पॉइंट इज वैलिड, तुम्हारी ये बात सही है। लेकिन वो उस्ताद था, उसने कहा बात तो तुमने बहुत सही की है ये, लेकिन तुम्हारे दिमाग की बात नहीं है ये, हम तुम्हारे लेवल को जानते हैं, किसने तुमको सिखाया है। उसने कहा नहीं उस्ताद, हमारे जहन में बात आई है। इसहाक किंदी ने कहा नहीं, हम तुमको जानते हैं, ये तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हें बताना पड़ेगा किसने तुमको ये सिखाया है। तब जाके उसने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का नाम लिया। इसहाक किंदी ने जब ये सुना तब कहा कि यकीनन तुमने अब हक की बात की है, इसलिए कि इस किस्म के बातें जो हिकमत की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर हो, सिर्फ उसी घराने से आ सकती हैं जो इल्म का घराना है। और अपने पूरे मैनस्क्रिप्ट्स को जमा करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी अगर हमारे इमाम न होते तो एक बहुत बड़ा ख़तरा था आलम इस्लाम में, कुरान के सिलसिले में। कुरान को महफूज किया है, उसको बचाया है, उसके इंटेग्रिटी को बचाया है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने। सलावात पढ़ने के बाद खुदावंद इस करी बात कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा। खुदावंद जहाँ जहाँ मुसलमान खुसूसन शियान अली परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को दूर फरमा। खुसूसन वो शिया जो सलफ़ी टेररिस्ट के टारगेट्स और शिकार बने हैं, खुदावंदा उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रख। और जो सलफ़ी दुश्मन हैं, अगर काबिल हिदायत हैं तो खुदावंदा उनकी हिदायत फरमा, और अगर काबिल हिदायत नहीं हैं तो उनके शर को मोमिनीन से दूर रख। इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।

0: जो बच्चों पे
1: बच्चों
0: हो
1: पे
0: रहा
1: हो।
0: है वो उस, यानी अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो वो
1: हाँ,
0: बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: संगीन है।
1: ज्यादा है। यानी इस्लाम तो हमें ये दावत, ये बात बताता है ना कि भाई आपको घर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि ये एक तरबियत गाह है ना, ये एक इंस्टीट्यूशन है। अब ये इंस्टीट्यूशन में अगर सरबरा ही लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे, तो हम बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? खुद हमारी तरबियत तो गई, नस्लों की भी खराब हो जाएगी, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली बच्चे फिर आपको रोल मॉडल ही नहीं मानेंगे। तो ये सबकी जिम्मेदारी होती है, यानी सास ससुर की भी जिम्मेदारी होती है, मियाँ बीवी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को, बच्चों के लिए वो रोल मॉडल हो, वो इस तरह से रहें कि बच्चा सीखे कि भाई हाँ ऐसे जिया जाता है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ऐसे सेक्रीफाइस किया जाता है। आजकल आप देखिए बच्चे ये जानते ही नहीं, जिम्मेदारियां नहीं लेते, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में खत्म होती जा रही है, ठीक है ना, रिस्पेक्ट बच्चों के अंदर खत्म होती जा रही है। तो ये कैसे खत्म हो रही है, कौन कर रहा है खत्म? तो ये जो रिलेशनशिप बच्चे देख रहे हैं ना माँ बाप की, सियासतें जो हो रही हैं सास ससुर ननद भावज, इनमें ये बच्चे इसको सीख रहे हैं, और इससे बच्चे जो है ना फिर वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो आखिर में जाके उनको मानते नहीं है।
0: यहाँ पर एक और पॉइंट आगे आपकी पॉइंट को ऐड करते हुए, कि वो जो माँ बाप बोल रहे हैं कि आप
1: जी
0: ऐसे करो ऐसे मत करो, उससे ज्यादा बच्चा ये देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं,
1: ऐसे ही है।
0: सास ससुर क्या कर रहे हैं, दादा दादी नाना नानी क्या कर रहे हैं। अगर वो ये देख रहा है कि ये कर रहे हैं कुछ और, बोल कुछ और रहे हैं, तो वो अमल
1: हाँ
0: उस पर नहीं करेगा जो बोल रहे हैं।
1: अच्छा देखिए ना, हम बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो अर्ली एजेस होते हैं ना बच्चों के, वो इमिटेट करने के होते हैं, वो कॉपी करने के होते हैं। तो
0: यानी क्या
1: वो
0: एज होती है अगर
1: मैंने
0: ये।
1: फर्स्ट 5 ईयर्स में बच्चा जो है वो सिर्फ इमिटेट करता है, ठीक है ना, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई नहीं होता है,
0: कॉपी करते
1: कॉपी
0: दूसरे।
1: करता है जो पेरेंट्स कर रहे हैं। जैसे बच्चा मदर टंग सीखता है, जो माँ बाप बोलते हैं बच्चा वही बोलना सीखता है। तो अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से तल्ख कलामी करेंगे, बुरी जबान इस्तेमाल करेंगे, गलत लहजे में बात करेंगे, तो बच्चा वही लहजे अडॉप्ट करेगा ना, वो बाहर जाके भी वही बोलेगा। फिर उस वक्त उस माँ बाप शॉक में आ जाते हैं कि हमारा बच्चा इस किस्म की लैंग्वेज कहाँ से बोल रहा है, वो खुद ही बोल रहे हैं, घर में बोल रहे हैं, इस तरह का
0: सही
1: बिहेवियर रख रहे हैं।
0: सही।
1: तो इस
0: सो अब पलट के आते हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकल तौर पर एक शौहर अगर बीवी के साथ, बीवी अगर उसके साथ क्या के कह रही है कि भाई तुम जो हो मेरी बात नहीं सुनते हो, मेरी बात को अहमियत नहीं देते हो, तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या क्या करे वो, स्टेप वाइज अगर आप उसे कहेंगे तो।
1: अच्छा, सबसे पहली चीज जो है ना वो लिसनिंग है। लिसनिंग स्किल जो है ना ये मर्द के अंदर होती है, उसको डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है, हर इंसान ये
0: अ
1: चाहता
0: गुड
1: है।
0: हस्बैंड हैज टू
1: गुड
0: बी अ गुड लिसनर।
1: लिसनर, सबसे पहला काम तो उसका ये है कि उसको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। बेशक वो 10 मिनट की ही के लिए पे अटेंशन करे, लेकिन प्रॉपर अटेंशन करे कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई मेरी बात सुन ली है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जब आप जाते ना, जो अच्छा डॉक्टर होता है वो पेशेंट को इस तरह से अटेंड करता है कि उसका आधा प्रॉब्लम तो उधर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है डॉक्टर समझ गया मेरी बात, है ना। अक्सर डॉक्टर्स की क्वालिटी होती है, या लॉयर्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, या काउंसलर्स होते हैं। तो पहला काम तो ये कि इस लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए।
0: तो अगर बीवी कंप्लेन करने आ रही है तो शौहर पहले जवाब देने के बजाय, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है ना रैशनली फौरन जवाब दे दो, चलो मतलब तुमने ये बोली हो ना तो ये दो
1: हाँ
0: दो तीन पॉइंट है तुम्हारे हिसाब से गलत है, ये 1 2 3।
1: हाँ
0: अब तो इसके अंदर आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं दें, सब्र
1: हाँ
0: करें और पहले आप सुने पूरी
1: हाँ
0: बात, सुने उस
1: हाँ
0: वाइफ की।
1: हाँ यानी आप जजमेंटल ना हो जाएं,
0: जी
1: क्योंकि बहुत सारी चीजें हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि अब ये शुरू हुआ है सिलसिला तो ये यहां तक पहुंचेगा
0: पहुंचे।
1: और ये यूं होगा, तो हम नतीजा निकाल के खुद ही दे देते हैं। ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन का जो बेसिक फंडामेंटल उसूल है वो ये कि आप सामने वाले को अपनी बात पूरी कंप्लीट करने दें, और उसकी बात कंप्लीट जब ही होगी जब उसको ये यकीन हो जाएगा कि इन्होंने मेरी बात सुन ली है और समझ भी ली है, ठीक है।
0: तो दो चीजें,
1: हाँ
0: पूरा सुनना है और कम से कम ये एहसास दिलाना है कि मैं समझ गया। आप
1: समझ,
0: समझे या नहीं
1: हाँ
0: समझो बात
1: वही
0: का मतलब,
1: बात,
0: लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन में उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप, उनको ये एहसास भी दिलाना है कि समझ गए।
1: हाँ तो अब वो कैसे समझेंगे, वो आप वैलिडेट करेंगे, ठीक है ना। जब आप किसी को वैलिडेट करते, जैसे आपको आज फोन किया आपने किसी को, आपने कहा हेलो, वहां से जवाब आया जी आपको बात समझ में आ गई कि हाँ मेरी बात पहुंच गई है, लेकिन अगर वो जवाब ही ना दे तो फिर आपको लगेगा कि मेरी बात पहुंची नहीं है, ठीक है ना। या वो जो सवाल आप कर रहे हैं उसका उल्टा पुल्टा जवाब देना शुरू कर दे तो आपको लगेगा नहीं वो नहीं समझा, फिर आप दोबारा रिपीट करेंगे। तो ख्वातीन भी बार बार जो रिपीट कर रही होती है ना, वो मर्द को बुरा लग रहा होता है कि बार बार क्यों बोले जा रही है एक बात को, वो इसलिए बोल रही होती है कि वो ये देख रही होती है कि मेरा मियाँ समझ ही नहीं रहा है उस शिद्दत को, जो जिस शिद्दत से वो बात को बयान कर रही है ना, वो उसको उस तरह रिसीव ही नहीं कर रहा।
0: हाँ, तो सब कॉन्शियस माइंड में उनको लग रहा है कि मैं इसलिए रिपीट कर रही हूं क्योंकि मेरी बात सुनी नहीं गई है या वैलिडेट नहीं की गई है या मेरी बात को समझा नहीं जा रहा।

0: नहीं, उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आया ना,
1: हाँ
0: जब उस तरह से रिस्पॉन्स आएगा शिद्दत के साथ तो उनको लगेगा हाँ,
1: अब मेरी
0: उतनी
1: बात,
0: ही शिद्दत के साथ ही समझें, जितनी
1: हाँ
0: पेन के साथ मैंने बताया है ना
1: बताया है।
0: उतनी ही पेन के साथ उन्होंने उसको रिसीव
1: हाँ
0: किया है।
1: तो आपने दो पॉइंट्स अभी तक बताए। पहला
0: जी
1: पॉइंट ये था कि आप लिसनिंग करें, सुने,
0: हाँ
1: पूरी
0: हाँ
1: बात सुने।
0: हाँ
1: दूसरा, एहसास दिलाएं कि आपकी आपने उनकी बात समझ ली है।
0: हाँ
1: और तीसरा है कि वैलिडेट करें।
0: हाँ
1: जी, वैलिडेट का मतलब एक थोड़ा सा और सादे अल्फाज में आप एक्सप्लेन करें कि यानी उसको थोड़ा सा अगर एक
0: ठीक
1: व्यूअर
0: है।
1: के लिए,
0: देखिए,
1: ताकि
0: वैलिडेशन का जो साइकोलॉजी
1: जी
0: में, टर्मिनोलॉजी में, कम्युनिकेशन में यूज होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को ये बताएं कि मैंने आपकी बात रिसीव कर ली है एज इट इज, लेकिन
1: सही।
0: मैं उस पे हाँ या ना नहीं कह रहा हूं।
1: अब कुछ जुमलों में बताएं कि मसलन अगर आपको कोई बात किसी की वैलिडेट करना है, खुसूसन अगर शौहर को लग रहा है कि मेरी बीवी कोई गलत बात बोल रही है, अभी जो ये गुस्से में कोई बात बोल रही है गलत है
0: हाँ
1: इस वक्त,
0: हाँ
1: अब उसे वैलिडेट करना है, तो
0: हाँ
1: कैसे वैलिडेट
0: फर्स्ट करें,
1: करेगा?
0: अगर वो ये कहती है कि मैं जब भी किचन में जाती हूँ ना कटिंग करने के लिए, तो आपकी अम्मी आके कहती है तुम्हें कटिंग करना नहीं आता, गोश्त ऐसे नहीं काटते, या सब्जी ऐसे नहीं काटते, उसको ऐसे काटते वैसे काटते, ठीक है, ये अब वो आपको ये बता रही है। नॉर्मली सिचुएशन में क्या होता है, मर्द को ये, मर्द ये रिसीव करता है कि ये मेरी अम्मी की बुराई कर रही है, फिर वो पलट के कहता है कि तुम हर वक्त मेरी अम्मी की बुराई क्यों करती रहती हो, तो वो आपको पलट के जवाब देती है कि मैं बुराई थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो आपको एक बात बता रही हूँ, मैं उनके कंप्लेन थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि वो मुझे आके बार बार जो है वो सिखाने की कोशिश करती है, जबकि मैं 20 साल से पका रही हूँ, मुझे पता है कैसे खाना पकाया जाता है। ऐसी सूरत हाल में जब ख्वातीन आके ये बात कहती हैं, तो मर्द को वैलिडेट कैसे करना है, मर्द को वैलिडेट ऐसे करना है कि अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि जब आप कटिंग करती हैं तो अम्मी आके आपको बताती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कट करो, यही कह रही है ना आप, तो वो कहेगी हाँ मैं यही कह रही हूँ। यहाँ पे आपने ये नहीं कहा कि मम्मी सही करती है या मम्मी गलत करती है,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: यानी उनको
0: आप
1: वैलिडेट करना, यानी उनको एहसास दिलाना कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और मैंने आपकी बात पूरी समझ ली है, और
0: हाँ
1: आपकी बात से ज्यादा फीलिंग्स को भी मैं समझ
0: फीलिंग्स
1: रहा
0: को भी
1: हूँ।
0: मैं समझ रहा हूँ,
1: जी
0: वो उसके बाद वाला लेवल है,
1: जी जी
0: यानी आपने वैलिडेट कर दिया
1: वैलिडेट कर
0: और
1: दिया,
0: आपने उनसे वैलिडेशन ले भी ली
1: ले भी
0: कि
1: ली।
0: हाँ यही कह रही है ना आप, तो फिर वो कहेगी हाँ मैं यही कह रही हूँ, तो फिर आप ये कहेंगे कि अच्छा आपको बुरा फील हो रहा है, तो यहाँ पे अब आप रिकन्फर्म कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही है, वो सिर्फ खबर दे रही है या वो साथ में कंप्लेन भी कर रही है,
1: हाँ
0: तो वो हो सकता है कहीं नहीं मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, वो हो सकती है वो कह के हाँ मुझे तकलीफ होती है बार बार क्यों वो ऐसे करती है,
1: जी
0: तो आप कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड, अब आप जो है ना वो एम्पैथी कर रहे हैं उसके साथ,
1: हाँ
0: आप कहें आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके साथ कि आपको क्या फील होता है, तो अब आपको फीलिंग्स को फील करना है, यानी ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक
1: जी
0: है ना। अब आप, यानी कम्युनिकेशन का तरीका ही यही है, अगर आपने यहाँ कोई गलती की तो फिर वो बार बार रिपीट होती रहेगी, क्योंकि आपने उस तरह से रिसीव ही नहीं किया सामने वाले की फीलिंग्स
1: तो
0: को।
1: बेसिकली हम एक हस्बैंड को यहाँ ट्रेन कर रहे हैं कि गुस्से में आती है बीवी तो उसे कैसे, अभी यानी अभी हम लोग उस पर आएंगे कि एक्चुअली
0: हाँ।
1: दिल भी उसका वैसा होना चाहिए, उस पर हम लोग
0: सही
1: डिस्कशन करेंगे।
0: सही
1: लेकिन टेक्निक एक शौहर के लिए ये है कि
0: हाँ
1: पहले वो सुने, फिर उसके बाद वो एहसास दिलाए कि मैं समझ रहा हूँ,
0: हाँ
1: वैलिडेट करे, वैलिडेट करने के बाद उसके
0: हाँ
1: इमोशंस को कहे कि आपको
0: हाँ
1: ऐसा ऐसा लग रहा है, कि आपको ऐसी
0: हाँ
1: फीलिंग हो रही है, जबकि आप जानते हैं, वो भी जानती है, लेकिन आपको
0: हाँ
1: कहना है।
0: कहना है, हाँ
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: ताकि
0: ऐसा कर,
1: ताकि वो जब नहीं कहेंगे, जब तक वो बात जो है एक
0: हाँ
1: कम्युनिकेशन में, एक औरत जो एक्सपेक्ट कर रही है, आप वो नहीं कर रहे हैं।
0: हाँ देखिए मैं आपको मिसाल दे, एक और मिसाल देता हूँ,
1: जी
0: शौहर थका हुआ आ रहा है ऑफिस से, ऑफिस के बखेरे आपको पता है कैसे होते हैं,
1: हाँ,
0: हाँ टेंशन ये वो घर क्यों आ रहा है,
1: सुकून के लिए।
0: सुकून के लिए घर आ रहा है, लिए तस्कुनु इलैहा, सुकून चाहिए उसको घर में, अगर बीवी हाउस जॉब नहीं करती घर में रहती है तो वो सारा दिन किसका वेट कर रही है सुनाने के लिए,
1: शोहर का।
0: शौहर का, तो अब वो जैसे ही घर दरवाजे से आएगा ना तो वो रिसीव करते ही शुरू हो जाएगी, आज मेरे साथ ये हुआ, उसने ऐसा किया, उसने यूं किया सारा।
1: अच्छा, इसके साथ वो कहती भी है कि मैं किसको कहूं, यानी मेरी कोई दोस्त नहीं है, अगर मैं किसी को अगर कहूंगी और कोई मेरा दोस्त है तो घर की बात बाहर
0: घर की
1: जाएगी,
0: बात बाहर जाएगी।
1: तो मुझे किसी और को नहीं कहना है।
0: अच्छा मैं यहाँ एक बात ऐड भी कर दूं,
1: जी
0: वो ये कि वो अपने शोहर को ना अपना बेस्ट फ्रेंड समझ रही होती है, वो
1: जी
0: शादी करती ही इसीलिए कि वो सारी बातें सबसे पहले अपने शोहर को बताएगी, ठीक है ना, और अगर वो शोहर रिसीव कर रहा है तो वो तो उसको फिर बहुत ज्यादा सुनाएगी, तो अब वो सारा दिन का जो इंफॉर्मेशन है वो अपने अंदर बर्दाश्त की हुई है कि वो आएंगे तो मैं उनको सुनाऊंगी,
1: हाँ
0: अब अगर शोहर प्रिपेयर्ड होके नहीं आएगा तो वो तो पहले इतने बखेरे लेकर आ रहा है घर, अब यहां से भी उसको डबल मिल रहा है तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो कहेगा बस मेरे आते ही शुरू हो गई हो, ठीक है ना, और तुम सुकून का सांस नहीं लेने दे रही, कम से कम मुझे ब्रेक दो, मैं यानी अब ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, तो वो क्या सोचेगी, वो सोचे कि इनको मेरा एहसास ही नहीं है, मैं सारा दिन इनका इंतजार कर रही थी कि ये आएंगे, मैं उनको बताऊंगी,

0: इन्होंने तो मुझे बिल्कुल नो लिफ्ट करा दिया, बल्कि उल्टा सुनाना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये मुझसे मोहब्बत नहीं करते।
1: हाँ, ये मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इनकी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं,
0: कोई वैल्यू ही नहीं है।
1: क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा सेंट्रल पॉइंट ये है कि शौहर एस्टैब्लिश करे अपनी वाइफ के लिए कि वो उनकी जिंदगी में
0: वैल्यू रखता है, और उसके साथ साथ वो उनमें इंटरेस्ट, तो वो जब आएंगे घर तो इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे मेरी बात, क्योंकि वो उसे मोहब्बत करते हैं।
1: सही। अब वाइफ की एक्सपेक्टेशन अगर शौहर ये समझ रहे हैं कि मेरा शौहर मुझसे, तो शौहर की जिम्मेदारी है 10 मिनट, अगर मैं इसको कहूं कि जैसा आपकी, मैंने आपके लेक्चर में सुना था कि अगर वो 10 मिनट हर रोज दे अच्छे से गौर से सुने, तो उसको एक महीने में 10 घंटे की लड़ाई जो है उससे अच्छा है कि 10 मिनट रोज जो है
0: सही से सुन ले।
1: तो ये, हाँ, तो ये प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि वैलिडेट हो गया। अब इमोशनली भी आपने कह दिया कि मैं समझता हूँ कि आपको बुरा लग रहा होगा, आपकी फीलिंग्स का एहसास है मुझे, ठीक है ना,
0: तो आपने ज्वाइन कर लिया।
1: हाँ, अभी आप उसके साथ, उसको लग रहा है कि ही इज माय कंपेनियन, अब ये मेरे साथ कंपेनियनशिप कर रहा है कि जो मेरी मुश्किल है, मेरी अकेली की मुश्किल नहीं है, मेरा शौहर उस मुश्किल में साथ में
0: साथ हो गया। तो ये जो टीम बनी है ना,
1: हाँ,
0: यानी टीम अप अगेंस्ट नहीं है किसी चीज के,
1: हाँ,
0: ये टीम अप इसलिए हुए हैं कि आप एक वेवलेंथ पे आ गए, अब बात शुरू होगी।
1: जी सही।
0: अब तक जो था ना वो सेटिंग हो रही थी, वो फ्रीक्वेंसी, जैसे रेडियो चैनल को फ्रीक्वेंसी सेट करता था ना, FM और MB और MW, तो वो आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर ली है। अब वो जो आपको बताएगी, अब आप जो कहेंगे ना, अब वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगी, वरना उसको उस वक्त तक लगेगा कि मेरी बात हुई समझी ही नहीं गई, अब वो वेवलेंथ पे आ गई है। तो फिर आप बैठ के बात करेंगे कि कैसे इसको लेके हम हल करें, इस मसले को कैसे एड्रेस करें, इस इश्यू को।
1: सही,
0: ठीक है।
1: तो एक मम्मी मम्मी और मम्मी मम्मा बॉय वाला जो डिस्कशन था, उसके अंदर अभी हमें समझ में आ गया कि बीवी की प्रॉब्लम है, बीवी ऐसा सोच रही है, बीवी शौहर से ये एक्सपेक्टेशन रखती है, और शौहर मैं इसको अगर आप करेक्ट करिएगा, शौहर अगर ही इज अ गुड मैनेजर, अगर उसके अंदर ये सलाहियत है, तो उसके पास दो रास्ते हैं, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने दे और उसके बाद वो स्ट्रेस ले और उसके बाद प्रॉब्लम्स हो, खुद की प्रॉब्लम्स और बाद में बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स, या तो ये करे या तो वो मैनेज करना सीखे। और मैनेज करने का सबसे पहला स्टेप यही है कि वो अंडरस्टैंड करे कि एक औरत कैसे सोचती है और उसकी सोच के मुताबिक अपने रद्द अमल को प्रिपेयर करे। शायद उसको लगी कि यार क्या नॉनसेंस है यार, एक बार बोल दी समझ में आ गया, अब मैं उसको बोलूं वैलिडेट करूं और मैं बोलूं फिर ये करूं क्या नॉनसेंस बातें। यानी लेकिन वो शौहर को ये देखना है कि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसके बरखिलाफ वो कितना नुकसान उठा रहा है खुद अपनी जिंदगी में, स्ट्रेस, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी उसकी जो उसके बच्चे और उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो कितना एक प्रॉब्लम, और कुल्लन एक घर के अंदर।
0: हाँ, देखें, हर चीज जो है ना वो उसकी बेसिस जो है ना वो कम्युनिकेशन से चीज स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और इस्लाम का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत काइंड, सॉफ्ट, पोलाइट होनी चाहिए। अब देखें हमारे घरों में किसके साथ किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, हम लोग अमूमन क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, हम लोग अमूमन ब्लेम कर रहे होते हैं, हम अमूमन लोगों को जिसे कहते हैं कि उनकी ह्यूमिलेशन होती है, इंसल्ट होता है, हमारी कम्युनिकेशन में इस तरह की एनवायरनमेंट होता है, लेकिन हम पोलाइट नहीं होते, काइंड नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, जेंटल नहीं होते, तो ऑटोमेटिकली जब हम अल्फाज यूज़ कर रहे होते हैं तो वो तल्ख होते हैं, इससे क्या होता है दिलों में जो है ना वो नफरतें बैठना शुरू हो जाती हैं। मामला सारा दिलों में मोहब्बतों का है, दिलों को नज़दीक लाने का है। तो क्या होता है जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, बेजार हो चुके होंगे एक दूसरे से, क्योंकि रोजाना की चिक-चिक है तो कम कम्युनिकेट करेंगे। अब आप जैसे ही कम कम्युनिकेट करेंगे ना, आपकी मोहब्बत में कमी आ जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी, जिंदगी सर्द होनी शुरू हो जाएगी। और जो आप फरमा रहे हैं ना कि लोग जान छुड़ाते हैं, तो वो जान छुड़ाने का नुकसान ये होता है कि मियां बीवी की रिलेशनशिप में वो मोहब्बत की गर्मी रहती ही नहीं है फिर, क्योंकि खत्म हो जाती है, वो कम्युनिकेशन से शुरू होती है, वो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही तो वो कैसे होगी। फिर शैतान भी अपना काम कर रहा होता है, उसका लश्कर जो है और काम कर रहा होता है, वो शक, शुभा, बहुत सारी चीजें ईजाद कर देता है।
1: तो यहाँ पर जो आपने बात की दिल की बात की, यहाँ पर दिल जो है फिर वो ईमान की तरफ पलटता है।
0: सही है।
1: ये तमाम चीजों में खुदा और शैतान को ढूंढना ये कितना इम्पोर्टेंट है।
0: देखिये हमें तो खुदा बंदे आलम ने साफ साफ पैगाम दिया ना कि हमें एक मोमिन बनना है, हमें एक मोमिन बनना है। मोमिन वही होता है जिसके दिल में किसी के लिए दर्द होता है ना, उसके दर्द का मतलब ये होता है कि वो उस दर्द की वजह से दवा भी करता है। सिर्फ दर्द होना तो काफी नहीं ना, दवा भी करना जरूरी है। तो अगर मैं शुरू से ही मेरा माइंडसेट ये होगा कि मेरी वाइफ या मेरे घर वाले उनका पेन मेरा पेन है, उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है. लेकिन आजकल घरों में क्या हो रहा है, ये आपका मसला है, ये आपका,
1: यू डील विद इट, इट्स योर प्रॉब्लम,
0: इट्स
1: नॉट माय प्रॉब्लम.
0: तो ये किसका एटीट्यूड है, ये कहाँ से आई ये फिक्र? हमारी तो फिक्र हम की थी, शादी ही इसलिए की थी कि अब हम से गुफ्तगू करेंगे, ना कि मैं एज एन इंडिविजुअलिस्ट या एज एन इंडिविजुअल. नहीं, हम तो कंबाइन यूनिट बन रहे थे ना. हम यूनिट ही नहीं है. अगर आप देखें मियाँ बीवी के रिश्ते में और पूरी फैमिली के रिश्ते में, ये यूनिट का तस्वीर बन नहीं रहा, बल्कि अभी भी एक मेरा अपना बैंक अकाउंट, मेरी अपनी गाड़ी, मेरा अपना घर, मेरा सब कुछ अपना अपना अपना अपना. तो फिर आप कैसे बात कर रहे हैं मोहब्बतों की, आप कैसे बात कर रहे हैं? इसलिए तुम कुर्बानी नहीं देना चाहते, यानी मियाँ बीवी के लिए कुर्बानी नहीं देना चाहते, बीवी मियाँ के लिए कुर्बानी नहीं देना चाहती. हत्ता आजकल की जनरेशन में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि माँ खुद बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती. वो कहती है मैं बच्चा क्यों पैदा करूं, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी मेरे ऊपर. तो यानी पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया. तो जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा तो आपके सोचने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा. तो अगर कोई एक अच्छा शौहर है तो उसको कैसे पता चलेगा वो अच्छा शौहर है?
1: इसी के अंदर आपके एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, आप इसको कंटिन्यू करिएगा, कि जो नॉर्मल इंसान नमाज पढ़ता है उसका एक टाइम का सवाब है
0: जी,
1: और शादीशुदा का 70 टाइम. क्यों है भाई 70 टाइम का क्यों है? खुदा ने या मसलन कहा कि भाई तुम्हारा आधा ईमान था,
0: सही
1: अब शादी हो गई तो पूरा ईमान हो गया.
0: ईमान हो गया.
1: कैसे पूरा हो गया?
0: बिल्कुल ऐसे ही पूरा हो गया, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में जो एफर्ट्स कर रहे हैं ना, जो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा कर रहे हैं, जो आप अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, और आप ये खुदा की आयत में से ना, वमिन आयत ही अन फुसकुम लितस्कुनु इलैहा वाली जो पूरी आयत है
1: जी,
0: तो ये
1: अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़ा करार दिया है ताकि तुम एक दूसरे से इज़दवाज करो और उसके जरिए से सुकून को हासिल
0: करो. तो जब आप सही प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो आपको सुकून हासिल होना शुरू हो जाएगा और फिर आपको मोहब्बत का एहसास होगा. ये मोहब्बत का एहसास और ये सुकून का एहसास, ये रिलेशनशिप का एहसास जो आपके अंदर डेवलप होगा, ये आपको खुदा से और नजदीक कर देगा, क्योंकि ये टेस्ट तो आपने कभी जिंदगी में हासिल किया ही नहीं था.
1: कितना इजी है वैसे इस्लाम में अगर देखा जाएगा कि इबादत, यानी रसूल अल्लाह ने कहा मसलन मासूम से हदीस है कि अगर आप अपनी बीवी को मोहब्बत से देखो मसलन इतना सवाब है, मसलन बीवी शौहर के लिए एक गिलास पानी लेके आ जाए तो इतना सवाब है, आप एक सुफरे पे खाना खाओ तो उमरे का सवाब है, आपने बीवी को मसलन ये कह दिया मसलन कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तो उसका ये सवाब है. तो यानी वो जो शौहर इस वक्त एक बीवी को देख रहा है, ये मसलन आप ही के बात इसको कंप्लीट करिएगा, बीवी को जब देख रहा है और बीवी तकलीफ में, ठीक है ना, तो वो भी तो मोमिना है.
0: सही है.
1: और जब इस्लाम ने ये कहा है तुमसे कि जब कोई मोमिन हो उसकी तकलीफ को दूर करने का सवाब जो है मसलन इतनी सारी इबादत से अफजल है, क्योंकि तुम्हारी बीवी या तुम्हारा शौहर मोमिन नहीं है, मोमिना नहीं है, वहां से क्यों नहीं शुरू हो रहा है ईमान? बाहर जाके दूसरों की मुश्किलें हल करना चाह रहे हैं, घर में जो बीवी मुश्किल में है. तो ये पॉइंट के इबादत का तसव्वुर, मतलब एक शौहर को लग रहा है कि बीवी इस वक्त गुस्से में, वो अली से मोहब्बत करती है, फातिमा जहरा से मोहब्बत करती है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करती है, अहले बैत से मोहब्बत करती है, इमाम मेहदी से मोहब्बत करती है, उसके दिल में तौहीद है, एक ऐसी खातून है जो मेरी वाइफ है, अब वो मुश्किल में है, अब वो सख्ती में है, इस वक्त परेशान है, इस वक्त इमोशनली उसको सपोर्ट की जरूरत है, अगर मैं मोमिन हूं और मैं ईमान रखता हूं तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उसको उस वक्त सपोर्ट देना? और उस वक्त जो 10 मिनट सब्र से मैं सुनूंगा वो इबादत का, वो क्या इबादत है? और अगर इबादत है तो किस लेवल की इबादत है कि खुदा कह रहा है कि तुम्हारे लिए इतना सवाब रखूंगा कि इतनी हज और इतनी इबादतें और इतना सवाब उसके.
0: वो एक हदीस है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रमजान के महीने में एतिकाफ में मस्जिद नबवी में बैठने का, इबादत करने का इतना सवाब नहीं है जितना दस्तखान में बैठ के खाना खाने का. तो ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है. और जहाँ तक दीनी पर्सपेक्टिव का ताल्लुक है, देखिए एक तो इस्लामी जो फिक्र है ना, ये क्लियर नहीं है लोगों को. इस्लामी जो नज़रिया है ना, वो नहीं, हमारे मिक्स चल रहा है. एक कुछ हमारे पर कल्चरल इफेक्ट है, हम बहुत सारी चीजें अपने कल्चर की वजह से करते हैं. अब हमारे कल्चर में प्योर इस्लामिक तो है नहीं, इसमें सब कुछ मिक्सचर चल रहा है. फिर जो सोशल मीडिया पे जो चेंज आ रहा है,
1: रियल वर्ल्ड जो है,
0: वो एक अलग आपको मेंटालिटी दे रही है, पर्सपेक्टिव दे रही है. तो इस वक्त अगर आप किसी इंसान से इस्लामिक जो जिंदगी गुजारने का फिक्र का तरीका है ना, जो अमल है, वो लोगों को आप देखेंगे तो नहीं है, उनको पता ही नहीं है सही से. और अगर वाकई इंसान मोमिन है जैसा आप कह रहे हैं, तो वो तो हमेशा सवाब और नेकी के
1: तलाश
0: में चला जाएगा. तो फिर वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मैं अपनी वाइफ की खिदमत कैसे करूं, क्योंकि दीन हमें सर्विस सिखाता है ना, और फितरतन इंसान के अंदर ये चीज मौजूद है कि वो इंसान की खिदमत करे।
1: देखिए मौलाना बोल रहे हैं वाइफ की खिदमत करो, खादिम।

0: मनोवाइफ का, ये याद
1: तो
0: रखिएगा।
1: सिर्फ
0: हाँ
1: एक आधी बात नहीं करनी है आपको, पूरी बात करनी है। अगर बी शौहर बीवी की खिदमत कर रहा है तो बीवी भी शौहर की
0: बीवी,
1: खिदमत कर रही
0: यानी
1: है।
0: एटीट्यूड दोनों का ये नहीं है कि मुझे
1: हाँ
0: कंपीट करना है,
1: एग्जैक्टली
0: बल्कि अगर मोहब्बत है तो दोनों एक दूसरे की खिदमत करने को तलाश करेंगे,
1: हाँ
0: यानी अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे
1: हाँ
0: कि मुझे खिदमत करना है।
1: तो अगर आप खिदमत करेंगे तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? आप कंप्लेन करेंगे?
0: नहीं
1: नहीं
0: करेंगे, क्योंकि
1: करेंगे।
0: आपका आपका तस्वुर ये है कि
1: हाँ
0: मैं मुझे काश मौका मिले खिदमत का,
1: खिदमत का
0: यानी
1: अगर ये जज्बा पैदा हो जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएं, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि उस हम

0: कि मैं मुझे काश मौका मिले खिदमत का,
1: खिदमत का
0: यानी
1: अगर ये जज्बा पैदा हो जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएं, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि उस हमारे तरबियत भी ऐसी नहीं हुई
0: क्योंकि ये
1: होती।
0: खुदा चाहता है, वहां से
1: हाँ
0: शैतान चाहता है कि आपके अंदर ईगो बढ़े,
1: हाँ
0: मैं क्यों करूं,
1: मैं क्यों करूँ,
0: वो नहीं आई, मैं क्यों
1: हाँ
0: जाऊं,
1: हाँ
0: मैं
1: हाँ
0: सॉरी क्यों बोलूं, मैं तो
1: हाँ
0: मर्द हूं, मर्द
1: हाँ
0: क्यों सॉरी बोलेगा।
1: ऐसे ही है।
0: और यानी शैतान, तो ये हमारे लिए क्लैश जो है उसके पीछे दो वजूद हमें नजर आते हैं, एक शैतान और एक खुदा।
1: एक मैं आपको काउंसलिंग की
0: जी
1: एक बात बताता हूँ। तो एक सेशन में वो कपल आए और उनका लड़ाई झगड़ा हुआ हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन से आप लोगों का चल रहा सेशन। उन्होंने कहा कि अब हम तो सेपरेट रह रहे हैं और बस अब हम डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। और वो दोनों अब जाहिरन मोमिना, मोमिन और मोमिना दोनों प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बिन माने ये कि नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सारे प्रैक्टिसिंग काम करते हैं जो हमारे। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपको ये हदीस नहीं मालूम है कि अगर मियाँ बीवी एक रात भी इख्तलाफ करके सोएंगे तो जब तक उनके सुलह नहीं हो जाता, वापस सुलह नहीं कर लेते, तो शैतान फरिश्ते जो है वो उन पर लानत भेजते रहेंगे, उनके कोई आमाल कबूल नहीं होंगे। तो एकदम उनकी आंखें जो थी ना वो फटी की फटी रह गई, सोचने लगे कि हम तो कितने दिनों से लड़ कर रह रहे हैं। तो मैंने कहा आप तो मोमिन है भाई, आप मोमिन है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं गलती तो इनकी है ना, इनको सॉरी करना चाहिए था पहले। तो मैंने कहा ये हदीस आपने नहीं सुनी कि अगर आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है लेकिन आपके लाइफ पार्टनर की गलती है, तब भी आप कह दें आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और आप सुलह कर लें। ये तो आपकी बड़ाई है ना कि आपने जानते हुए आपने खुदा को राजी करने के लिए आपने ये काम कर लिया जिससे खुदा खुश होता है,
0: सही
1: तो
0: बात
1: आपको
0: है।
1: दुनिया भी मिलेगी आखिरत भी मिलेगी। तो फिर वहां उनकी सुलह कराई वहां पे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ तो ये बेसिक चीजें जानने के बाद भी लोग उस पर अमल नहीं कर रहे होते, तो आपको पता चलता है कि इंसान अपने अंदर खुद साजी नहीं की है, अपने आप को
0: तो जब
1: डेवलप नहीं किया
0: भी
1: है।
0: यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आपसे दीन एक्सपेक्ट कर रहा है कि लेट गो, यानी कि शादी के अंदर, किसी एक मैं लेक्चर देख सुन रहा था तो उसके अंदर शादी के लिए सबसे ज्यादा एक आदमी था जिसने 60 ईयर्स अच्छी हैप्पी मैरिज गुजारी, उसको पूछा कि एक जुमले में बताओ कि बेस्ट शादी का
1: हाँ
0: फॉर्मूला क्या है, तो
1: हाँ
0: उसने बोला दो वर्ड्स में बताता हूं मैं, कहता है क्या, लेट गो।
1: लेट गो।
0: हाँ
1: अच्छा चलो तो मैं भी आपको ऐड कर देता हूँ इसमें एक चीज।
0: जी
1: वो मैं क्लिप देख रहा था तो
0: जी
1: उसमें उन्होंने कई फैमिलीज, इट वाज अ जोक, जोक
0: हाँ
1: नहीं यानी बल्कि एक एक पर्सपेक्टिव था।
0: जी
1: उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपकी भी मैरिजेस को 50 इयर्स एंड 60 इयर्स एंड 40 इयर्स और ये हो गए वो हो गए, तो ये कैसे चल रहा है आपका, सक्सेस का रीजन क्या है। तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द हस्बैंड्स ने कहा कि माय वाइफ इज ऑलवेज राइट। तो आप वो ये मैसेज देते कि इफ यू से योर वाइफ इज ऑलवेज राइट देन यू गोना हैव अ हैप्पी लाइफ।
0: हैप्पी लाइफ,
1: तो
0: यस।
1: बाज जगह ये फॉर्मूला चल रहा होता है, लेकिन बाज जगह जो इस्लाम चाहते हैं वो ये कि नहीं, आप दोनों को ये एहसास होना चाहिए कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है ना, हम दोनों की सही बात को, हम एक दूसरे की सही बात को मानते हैं, और खुदा हमारा स्टैंडर्ड है ना, क्राइटेरिया खुदा है, खुदा की बात है ना कि मेरी बात
0: ये
1: और इसकी
0: मैं
1: बात,
0: जो है ना, ये
1: ये
0: प्रॉब्लम
1: है तो
0: क्रिएट,
1: प्रॉब्लम।
0: ये मैं जो है यही शैतान है, यही वो जो ईगो है
1: ईगो है
0: वही जो है, और वो ईगो शैतान की तरफ से है
1: बिल्कुल।
0: और सुल अल्लाह की तरफ से है। जो
1: हाँ
0: आपने एहसान का कॉन्सेप्ट स्टार्ट में कहा कि खुदा चाहता है कि रिलेशंस में एहसान है,
1: एहसान हो।
0: मवद्दत है, रहमत है,
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: जो मैरिज की रिलेशन की आयत है खुदा उसमें कहता है कि तुम दोनों के दरमियान मवद्दत और रहमत है,
1: रहमत है।
0: यानी रिलेशनशिप जस्टिस से नहीं
1: हाँ नहीं
0: चलेगी।
1: चलेगी वो, आगे उससे तो आगे बढ़ना
0: जी थोड़ा
1: पड़ेगा।
0: सा एक्सप्लेन करें, अगर ये
1: सही है।
0: रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट में मवद्दत और रहमत का क्या रोल है, यानी
1: हाँ
0: हस्बैंड वाइफ वन वे नहीं है, दोनों
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ देखें खुदावंद आलम ने इस आयत में जो है ना तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाई, यानी ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ना, चाहे वो किसी से भी हो, लेकिन खास तौर से मियाँ बीवी
0: मियाँ
1: के
0: बीवी का
1: इंटरेक्शन में जो प्रिंसिपल है ना, वो उसका आउटकम ये है कि आपको सुकून हासिल हो, ये आउटकम है।
0: हाँ
1: उसके लिए बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, मवद्दत व रहमा। तो ये रहमत जो है ना जिंदगी में, ये इसका ये एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करती है कि जिसके अंदर जो है ना वो मर्सी के बगैर हो नहीं सकता। यानी जब तक आप किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे, फॉरगेट नहीं करेंगे, ओवरलुक नहीं करेंगे सामने वाले के मिस्टेक्स को, उसके दिल में आपके लिए जगह कैसे पैदा होगी। अगर आप मेरी हर गलती पर टोकना शुरू कर देंगे और हर चीज पे मुझे उसका पनिशमेंट मिलेगी या मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ हदीस ये कहती है आपको कि अगर तुम्हारी बीवी गलती करे तो उसको माफ कर दो। उस खुदा को पता है साइकोलॉजी का, वुमेन साइकोलॉजी का, तो वो ये बता रहे हैं कि गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, आप फगिव करें, यानी आप रहमत के साथ पेश आए, तो क्या होगा, आपके दिल में लोगों, आपकी बीवी के दिल में आपके लिए जगह होगी और वो उसी मोहब्बत की खातिर करेगी।

0: हाँ
1: और जैसे आपने कहा कि उसको आपको कहना है मिसाल के तौर पर कि आपके इस चीज से मुझे ये एहसास हो रहा है,
0: हाँ
1: यानी ये कम्युनिकेशन दोनों तरफ से क्लियर होना
0: क्लियर
1: चाहिए।
0: होनी चाहिए।
1: जितना कम्युनिकेशन क्लियर होगा उतना,
0: हाँ
1: मिसाल के तौर पर अगर अगर बीवी चीख के बोल रही है तो शौहर
0: हाँ
1: को जैसा क्या कहना चाहिए?
0: पहले मरहले में खामोश रहना चाहिए।
1: जी
0: अगर वाकई कोई इंसान गुस्से में चला गया ना, यानी उसकी अकल जाया हो चुकी है, वो आपे से बाहर है, तो उसको वो आपे में नहीं आएगा उस वक्त तक के जब तक वो काम नहीं हो जाए।
1: इसके लिए मौला अली की हदीस भी है, फैजा
0: जी
1: गजिब था
0: हाँ
1: फसकुत, यानी जब गजब आ जाए तो
0: हाँ
1: खामोश हो
0: तो
1: जाओ।
0: खामोश हो, क्योंकि आपको पता काम नहीं कर रहा, सेंट्रल सिस्टम काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब आप उसको बोलने दें, वेंट आउट करने दें, वो वेंट आउट हो जाएगी या हो जाएगा, तो फिर आप अपनी आप गुफ्तगू को शुरू करें कि आपके इस
1: उसी वक्त या थोड़े वक्त
0: नहीं,
1: के बाद?
0: आप ब्रेक लेना, यानी उस बंदे को काम डाउन होने दें। अगर आपको लग रहा है कि आप इमोशनल हो रहे हैं जवाब देने के लिए, तो आप कहें कि भाई वी विल टॉक सम अदर टाइम, हम किसी और वक्त पे बात करेंगे, मिसाल के तौर पर। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, सामने वाले का बोल दिया है, उसके भड़ास निकल गया है, तो फिर आप उससे कहें कि मिसाल के तौर पर आप पानी दें उसको, सर्व करें, ताकि उसको ये एहसास हो कि आप साइलेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं।
1: हाँ, केयर कर रहे हैं आपने।
0: हाँ, यानी आपने साइलेंटली प्रोटेस्ट किया है कि मुझे आपकी ये बिहेवियर पसंद नहीं आया, लेकिन आप बोल नहीं रहे, लेकिन आप उल्टा उसको सर्व कर रहे हैं कि आपने मेरे साथ अच्छा एटीट्यूड नहीं रखा है, लेकिन मेरा एटीट्यूड आपके लिए अच्छा है। तो आप कहेंगे आपको कुछ लाऊं, खिलाऊं, पिलाऊं, सर्व करूं। वो कहेगी आप तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, बात तो मेरी सुनते नहीं है, यू नो।
1: हाँ
0: वो कहते हैं ठीक है, इट्स ओके, आप कहें ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब राइट टाइम होगा ना, फिर आप अपनी बात को उस राइट मोमेंट पे डिस्कस करेंगे। उसके लिए ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज को उसी वक्त सॉल्व कर लें, इट डिपेंड्स ऑन द केस एंड द सिचुएशन। तो अगर ऐसा केस है कि वो बोल के उसने यूं किया है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उन्होंने अपनी सारी बात कह दी है, तो फिर आप पोलाइटली कहें कि ये बात आप पोलाइटली भी कह सकती थी, ठीक है ना, मैं समझता हूँ,
1: जी
0: अगर वाकई गलती है तो मान लें, नहीं है तो आप कहें मैं इस पर वर्कआउट करूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। तो उसको ना थोड़ा डिले कर दें, जरूरी नहीं है उसको, ये समझ ना मैं
1: सही
0: क्या
1: सही
0: सिचुएशन
1: सही
0: को।
1: सही। अच्छा,
0: हाँ
1: इसके अंदर ये भी होता है कि मसलन हमें मैसेजेस आते हैं कि शौहर ने बोल दिया है मेरी गलती हो गई, लेकिन वाइफ कहती है तुम तो हमेशा कह देते हो मेरी गलती है, लेकिन बाद में उसको चेंज ही नहीं करते हो, बाद में फिर से वही करते हो।
0: हाँ अच्छा देखिए, ये एटीट्यूड क्या है, ये कंप्लेन का एटीट्यूड है, ठीक है ना। ये सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम। सॉल्व कैसे होगा कि हम इसको कैसे इम्प्रूव करें, यानी मिसाल देता हूँ, यानी एक शौहर ने दिन में 5 दफा वो ये गलती करता है, तो अब मियाँ बीवी ये प्लान करेंगे कि यू हेल्प मी कि मैं 5 दफा के बजाय अब 2 दफा कर पाऊँ, फिर 1 दफा कर पाऊँ।
1: एक दूसरे को हेल्प करें वो जर्नी में जो परफेक्शन की तरफ जाना है, खुदा की
0: ऐसा
1: तरफ जाना है।
0: एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं कंप्लेन शुरू कर दूं, तो भाई मैं भी तो हजारों गलतियां करता हूं दिन में, तो हम गलतियों पे गलतियां गिनवाते रहेंगे तो कभी इंप्रूव नहीं
1: तो
0: होंगे।
1: ये गेम चल रहा है कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग,
0: हाँ
1: ये गेम से बाहर निकल के एक और गेम खेलना है। वो
0: हाँ
1: गेम ये कि हाउ कैन वी टुगेदर रीच दैट पीक दैट
0: हाँ
1: अल्लाह सुबहाना व तआला हैज सेट। अल्लाह ने मुझे वहां तक पहुंचाना
0: हाँ
1: था,
0: हाँ हाँ
1: मैं और तुम मिलके कैसे वहां पहुंचे?
0: हाँ
1: तो ये
0: अगर अगर
1: दूसरा
0: हाँ अगर गोल सेट हो जाए
1: जी।
0: और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे कि हमें उस गोल तक दोबारा पहुंचना है, तो दे विल बिकम अ टीम मेंबर। अभी ये टीम मेंबर नहीं है, अभी ये टू राइवल्स हैं, ठीक
1: जी
0: है ना। तो माइंडसेट चेंज करना है, खुदा ने हमारा माइंडसेट ही सेट करने के लिए तो शादी कराई है, कि भाई आपका माइंडसेट सेट हो जाए, आप एक दूसरे को समझें और उसी हिसाब से एक दूसरे को डील करें, तो आपकी आप इंजॉय करेंगे लाइफ को। यानी अगर आपकी मियाँ बीवी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको एक दूसरे के साथ इतना मजा आ रहा होता है, आपको लगता है वाकई अल्लाह ताला ने क्या कॉम्बिनेशन बनाया है। अब आप किसी इस तरह की बात करें, लोग कहेंगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो हमें पता है कि ये हम क्या झेल रहे हैं इस वक्त।
1: जी
0: ये इसलिए कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अगर
1: जी
0: आपको एक बच्चे को मैं लैपटॉप दे दूं जिसको चलाना ही नहीं आता, उसके लिए तो ये किसी काम का नहीं है ना, बल्कि शायद उसके लिए प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अगर आपको यूज करना आता, आपको स्किल्स आते हो, तो आप उससे बेहतरीन काम ले सकते हैं। तो इसी तरह है इंसान के साथ, कि अगर आप इंसान इंसान को समझ लेगा, तो वो एक दूसरे को इतना जबरदस्त सपोर्ट करेगा कि वो उनको जीने में मजा आएगा।
1: मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम जो अक्सर सवाल आते हैं जवानों के साथ बैठते हैं कि मर्द औरत की साइकोलॉजी को नहीं समझता है, यानी वो समझ नहीं पाता है कि औरत इस वक्त क्या चाह रही है। मर्द अपनी जोन में रहता है, औरत अपनी जोन में
0: अपने
1: रहती
0: जोन
1: है,
0: में रहता
1: औरत
0: है।
1: भी नहीं समझ पाती है कि मर्द क्या चाहता है, मर्द क्या सोच रहा है। औरत अपने पर्सपेक्टिव से देखती है, और इसीलिए मैरिज एक ईमान को परफेक्शन इसके लिए, क्योंकि तुमने अब तक क्लेम किया था ना कि तुम अल्लाह के कानून पर अमल करोगे, तुम सब्र करोगे, तुम रहमत दिखाओगे,
0: हाँ
1: ने सब क्लेम किया था ना,
0: हाँ
1: चलो शादी करके बताओ कर
0: बताओ
1: सकते हो कि नहीं
0: कि
1: कर
0: नहीं कर
1: सकते हो।
0: सकते हो। अच्छा, हमारी ना तरबियत भी नहीं होती, हमारी जो बचपन से तरबियत होती है ना,

0: वो उसमें ये ट्रेनिंग नहीं होती कि भाई आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ कैसे रहना है। मिसाल पे घर में बहनें हैं, वालदा हैं, दो ऑपोजिट जेंडर्स घर में है ना, इसी तरह बेटियों के लिए भाई हैं या अब्बा हैं या चचा हैं, जो भी है, मामू हैं, तो ये ऑपोजिट जेंडर्स के साथ हम जब रह रहे होते हैं तो हम उनके बारे में सोचते नहीं है कि ये क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं,
1: ऑब्जर्व नहीं करते,
0: नहीं करते। और हमें जो आदाब इस्लामी है, इस्लामिक मैनर्स एंड एडिकेट्स भी नहीं सही से सिखाए जाते। अगर हम वाकई अदब सीख लेंगे ना तो हमारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। हम अदब से एक दूसरे के साथ पेश ही नहीं आ रहे होते। नंबर वन कंप्लेन जो खवातीन को है शोहरों से, एक तो ये कि हमें
1: पांच बोले आप, ये
0: अच्छा
1: नंबर वन आपने शुरू कर दिया था, आपको आपके
0: अच्छा
1: आगा के जो है तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा आगा ने काउंसलिंग किए होंगे फैमिलीज के, तो अब पांच टॉप प्रॉब्लम्स बनाएगा
0: नहीं, सबसे पहला प्रॉब्लम तो
1: कंप्लेन
0: खवातीन
1: जो
0: का,
1: उनके
0: सबसे नंबर वन पहला बता दो, नंबर वन कंप्लेन जो ये वो ये कि शौहर हमारी बात नहीं सुनते,
1: सुनते नहीं।
0: वो ना सुनते हैं ना समझते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नंबर, उसके बाद जो कंप्लेन का एक सीरीज शुरू होता है, उसमें कंप्लेन ये कि हमारे शौहर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है।
1: तो दो प्रॉब्लम्स हो गए,
0: दो
1: सुनते नहीं
0: दो
1: है,
0: एक तो सुनते
1: रिस्पेक्ट
0: नहीं
1: हो
0: है,
1: गए।
0: एक हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। तीसरा प्रॉब्लम उनको ये होता है कि वो उनके फाइनेंशियल मैटर्स को उस तरह एड्रेस नहीं करते जिस तरह वो चाहती हैं, ठीक है ना। उनकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो उस तरह से फुलफिल नहीं होती है। चौथी चीज़ ये कि कभी हमारे शौहर हमें अप्रिशिएट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। हम खाना अच्छा बनाते हैं, कभी तारीफ नहीं करते। हम उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं, उनको किसी चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं होता। हम उनके लिए बच्चा बच्चा पालते हैं, बच्चा देखते हैं, वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो
1: उनको
0: यानी एक,
1: करती क्या तू घर पे,
0: हाँ यानी वो अप्रिसिएशन है ही नहीं। और जो कर रही हो तो तुम्हारा हक है, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है,
1: जिम्मेदारी है तुम्हारी।
0: जिम्मेदारी। हाँ फिर उनकी जो और कंप्लेन होती है वो ये होती है कि जो कंप्लेन मैं करती हूँ उसको जो है ना आप इम्पोर्टेंस नहीं देते। यानी चाहे वो इन लॉस की कंप्लेन हो, चाहे वो टाइम की कंप्लेन हो, जैसे कि आजकल का नंबर वन कंप्लेन ये कि शौहर हमें टाइम ही नहीं देते, वो आके मोबाइल में किसी और के साथ लग जाते हैं और हमें घर में बिल्कुल एज अ मेट इस्तेमाल करते हैं, आया के तौर पर रखते हैं। तो ये मिसाल के तौर पे
1: पांच चीजें जो
0: पांच
1: आपने
0: चीजें,
1: बना
0: फर्स्ट
1: दी।
0: आपने फर्स्ट फाइव बोली है,
1: हाँ
0: तो ये मैं आपको फर्स्ट फाइव बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं आपके पास कौन सी कंप्लेन आती हैं, तो आप मुझे वो कंप्लेन बताएं।
1: देखिए जो हम लोगों के जो अभी मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं, काफी मैसेजेस हैं,
0: अच्छा
1: ज्यादातर उसमें एक ग्रुप है वो सास ससुर वाला है,
0: हाँ
1: कि जहां पर खवातीन जो हैं वो सास ससुर के कंप्लेन करती हैं कि
0: हाँ
1: सास जो है मेरी मेरी जिंदगी जो है, मसलन मैं जो भी खाना बनाती हूँ उसके अंदर कंप्लेन करती हैं, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, मेरी तौहीन करती हैं लोगों के सामने, या कभी अप्रिशिएट नहीं करती हैं, और सास की वजह से मेरी जिंदगी के अंदर जो है मेरी जिंदगी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई है। ये मुझे लगता है कि हम लोग, मुझे जो मैसेजेस आए हैं उसके अंदर से एक बड़ी तादाद जो है
0: जी जी
1: वो सास से रिलेटेड
0: साथ
1: हैं,
0: से
1: जो
0: रिलेटेड।
1: प्रॉब्लम्स जो हमने शुरू ही किया था कि सास से। तो अभी हम लोगों ने पहले ही अभी तक जो डिस्कशन हमारा था कि
0: जी
1: एक शौहर बीवी के साथ कैसे
0: डील करेगा।
1: डील करे, अभी एक एक सास के साथ एक बहू कैसे डील करे और सास का क्या रोल है। मैं एक मेरी एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप इसको करेक्ट करिएगा, कि सास और ये बीवी के बीच में जो बेचारा एक मिक्सर के अंदर जो शौहर बेचारा जो है
0: अच्छा इसको बेचारा नहीं कह सकते आप,
1: हाँ
0: ये हर वक्त बेचारा नहीं होता, इसकी अपनी
1: जी
0: मिस्टेक्स होती हैं।
1: जी जी
0: चलिए अब आप बात
1: चलिए
0: पूरी
1: बताएं
0: मुकम्मल,
1: बताएं
0: नहीं आप
1: बताएं।
0: बात पूरी
1: ठीक,
0: मुकम्मल
1: तो
0: करें
1: मैं कह
0: जी।
1: रहा हूँ कि एक जो ये हाँ इसको सही से डील करने नहीं आता, या उसने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं अदा की, उसको आप करेक्ट करिएगा, लेकिन कि ये सिचुएशन के अंदर अगर कभी शौहर को मसलन ऐसा लगता है, जैसे हमारे पास यूथ आते हैं कहते हैं मौलाना हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल इनमें से एक एक के ऊपर जुल्म कर रही है,
0: सही है
1: ठीक है, और अगर मैं उसको सपोर्ट करूंगा तो क्या रोजे कयामत मुझे जवाब देना पड़ेगा कि तुमने उसको जुल्म को सपोर्ट किया था। एक दो, अगर मैं उनसे मोहब्बत करता हूं तो मैं कैसे अलाउ करूं कि वो जुल्म कंटिन्यू करें ताकि रोजे कयामत उनको अजाब मिले। तो मैं अगर मोहब्बत करता हूं तो मेरे लिए मेरी मेरे लिए जरूरी है कि मैं रोकूं जुल्म को। तो इसको कैसे आप देखते हैं?
0: तो देखिए बात यहाँ ये है कि मोहब्बत जुल्म ये इसका इशू नहीं है, अभी इससे पहले जाना पड़ेगा। पहले ये कि मेरी शरई जिम्मेदारी क्या है, खुदा ने मेरा मेरे हुकूक जो है ना, मियाँ बीवी के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, सास ससुर के हुकूक, ये हम उसकी रियायत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उसका लिहाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शरई हुकूक की बात होगी, हुकूक पामाल नहीं होने चाहिए। अगर हुकूक पामाल होंगे तो यानी जुल्म होना शुरू हो गया, ठीक है। इसको इसको एज अ फर्ज मुझे अदा करना है। तो अब ये लड़का जो है जिसको मोहब्बत भी है अपनी अम्मा से और पता भी है कि अम्मा सही नहीं कर रही है या बीवी से मोहब्बत है और बीवी भी सही नहीं कर रही है, तो यहाँ ये देखना होगा कि अगर इस रिलेशनशिप में जिंदगी में हरज पैदा हो रहा है, जिंदगी इसकी डिस्टर्ब हो रही है सबकी, तो फिर इसको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हमें अपनी नस्लों के लिए क्या करना है। अब सिर्फ आप मियाँ बीवी नहीं देख पाएंगे, आपको पूरी फैमिली को देखना पड़ेगा। तो अगर मराजों का कहना ये है, मराजा कराम ये कहते हैं कि अगर जिंदगी में हरज हो रहा हो और आपसे ही मसला हल नहीं हो रहा हो, यानी आप अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इनको सेपरेट कर दें। यानी बीवी अब मियाँ बीवी बच्चे अलग रहें और माँ बाप अलग रहें, ताकि इनके दरमियान चपखलिश ना हो, टेंशन ना हो, दोनों एक दूसरे से नफरत ना करने लगें और दोनों एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट ना करने लगें। इससे बेहतर है कि इस तरह की जिंदगी गुजारे से बेहतर है कि सेपरेट रहकर इज्जत के साथ मिलें, एहतराम के साथ मिलें, ताकि उनका भरम भी रहे और नई नस्लों की सही तरबियत भी हो सके। वरना आप एक बच्चे को ऐसे वॉर जोन में लेकर आ रहे हैं दुनिया में कि उसने पीसफुल पीस देखा ही नहीं, उसने हार्मनी देखी नहीं, उसने मोहब्बत चाहत इज्जत देखी नहीं, कोई तो लड़ाई झगड़े फसाद, तो वो क्या बनेगा, वो बच्चा नस्लें क्या बनेंगी।
1: क्या असर होता है? व्यूअर्स को बता दें कि अगर ऐसे घर में बच्चे जो पलते हैं,
0: हाँ
1: तो क्या स्टडीज बताती है बच्चों के साइकोलॉजी और बिहेवियर के ऊपर क्या असर होता
0: हाँ
1: है?
0: सबसे पहले ये कि बच्चा ये सीखता ही नहीं है कि रिस्पेक्ट क्या हो चीज होती है ना। बच्चा देखता है कि माँ बाप जो है वो लड़ रहे हैं, मेरी अम्मा लड़ रही, मेरी दादी लड़ रही है, ये जो बच्चा एनवायरनमेंट देखता है तो वो नेगेटिव बच्चा बनता है, उसका पर्सपेक्टिव अच्छा। बाज बच्चे पैसमिस्टिक हो जाते हैं, इस हद तक नेगेटिव हो जाते हैं कि वो हर एक को बुरा समझने लगते हैं, क्योंकि जो घर जो एक रोल मॉडलिंग की जगह थी वो जंग की जगह है, जहाँ पे इंसान की इंसल्ट होती है, ह्यूमिलेशन होती है, तो उसके दिल में किसी दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं रहती, उसके लिए बड़े की रिस्पेक्ट नहीं होती, किसी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं होती। फिर वो बच्चा वही लैंग्वेज वही एटीट्यूड अपने माँ बाप के साथ करता है बड़ा होके, क्योंकि उस वक्त वो यही ट्रेनिंग ले रहा होता है, कॉन्शियसली भी एंड अनकॉन्शियसली भी वो उसके साथ यही वो ट्रेन हो रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली ऐसे बच्चे अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो उसी एटीट्यूड को फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये एहसास करते हैं कि नहीं हमें ऐसे नहीं जीना, वो परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर वो बच्चे वही कर रहे होते हैं जो
1: अगर
0: इनके बाप
1: स्ट्रेस
0: दादा कर रहे
1: देखते हैं
0: आते
1: माँ
0: हैं।
1: बाप की जिंदगी में, तो ये बच्चों की मैरिड लाइफ में उसका असर डेफिनेटली होगा कि उन लोग भी ऐसे ही बिहेव
0: ऐसे ही
1: करेंगे।
0: बिहेव करेंगे, क्योंकि वो ना उसको समझ रहे होते हैं ये कामयाबी का तरीका है। जैसे बहुत सारे मियाँ शोहर होते हैं वो अपनी बीवी पे बहुत जुल्म करते हैं और वो बच्चों को भी सिखाते हैं कि औरत को ऐसे ही डील करो, ऐसे ही करोगे तो ये सही रहेगी, तो वो बच्चे बहुत सारे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और वो माँ क्योंकि वो पिस पिस कर जी रही होती है वो उसको भी ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से हमारी ऐसी जिंदगी हो रही है। तो इससे क्या होता है वो उल्टा कंस्ट्रक्टिव होने के पूरा एनवायरनमेंट ही नेगेटिव हो जाता है और ये बच्चे फिर दूसरों पे जाके जुल्म करते हैं, तो नस्लें
1: और
0: बर्बाद हो
1: उनकी
0: जाती हैं।
1: जिंदगी के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर क्या असर होता
0: सबसे
1: है?
0: ज्यादा बच्चा जो है ना वो इनसिक्योर हो जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इंसान की रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी का है। अगर सिक्योरिटी का एहसास होगा तो ग्रोथ होगी ना। अगर आपको पता चल जाए अभी फायरिंग हो रही है और वॉर हो रही है घर के बाहर, मिसाल के तौर पे लोग आके लूट रहे हैं, तो आप बाहर निकलेंगे घर से? आप नहीं निकलेंगे, आप डर जाएंगे ना। जो खौफ होता है वो इंसान के ग्रोथ को रोक देता है। तो और इस्लाम ने हमें यही समझाया ना कि दीन पीस का रिलीजन है, पीस से इंसान ग्रो करता है ना कि खौफ से। तो ये खौफ इंसान को दूर कर देती है, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम बच्चों का खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा कोई किसी सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव होगा ही नहीं, ना ये किसी पे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि वो किस पे ट्रस्ट करे, ना माँ पे, ना बाप पे, ना दादा पे, ना दादी पे। तो हम अपनी जंग लड़ रहे होते हैं लेकिन हम नस्लों को खराब कर रहे होते हैं, और यही नस्ल आके बाहर जब बड़ी होती है तो ये कहती है कि दुनिया बेकार जगह है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, यू नो। और फिर ऑटोमेटिकली जब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो फिर आप सोसाइटी में रहेंगे कैसे? सोसाइटी तो बगैर ट्रस्ट के रह नहीं सकती। तो आज जो जुवेनाइल क्राइम है दुनिया में इतना बढ़ता जा रहा है कि जेलों में जगह नहीं है बच्चों को रखने की, यानी इतना क्राइम रेट बच्चों का बढ़ गया है। वो बच्चों का क्राइम रेट जब आप पूछते हैं ना, या बड़े बड़े दुनिया में जो क्रिमिनल्स हैं आप उनसे पूछें कब से आप बने, तो कहते हैं कि घर के प्रॉब्लम की वजह से हम भागे थे, घर के प्रॉब्लम की वजह से आज हम इस तरह के हो गए। तो ये चाइल्डहुड है ना सारा।
1: जी, तो यानी ये जो कुल्लन एक प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट, ये वो, इसको क्या चश्मे से आप देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि अगर हम इस चश्मे से देख रहे हैं कि मैं हूं और मैं, और एक चश्मा ये है कि नहीं अल्लाह का अब्द हूं

0: चश्मा है, अल्लाह ने मुझसे क्या चाहा है ये अलग चश्मा है। कुल्लन सक्सेस एंड फेलियर का भी जो एक इंसान जो है मर्द के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो सक्सेसफुल है या फेलियर है।
1: बिल्कुल,
0: अब उसके लिए बिजनेस पैसा ये एक क्राइटेरिया है उसके सक्सेस का, लेकिन मर्द कभी नहीं सोचता कि मेरी शादी सक्सेसफुल नहीं चल रही है यानी लेकिन यानी मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, जबकि हकीकत में वो भी उसके सक्सेस का एक मेयार है कि क्या इज ही गुड इनफ टू मैनेज दैट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। अगर वो नहीं, दैट मींस ही इज नॉट अ गुड मैनेजर। इट इज पॉसिबल कि आपने अपनी तमाम स्किल्स, तमाम नॉलेज, स्टडीज आपने पढ़ा, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, उसके बाद भी खराब हो।
1: हाँ,
0: नबियों की वाइफ खराब रही
1: ऐसे
0: है,
1: ही ऐसे ही।
0: लेकिन आप नबी बने थे फिर वाइफ खराब हुई है, या आप स्टार्ट से ही कुछ और थे जबकि
1: सही
0: वाइफ
1: है,
0: खराब है।
1: सही है।
0: तो ये सक्सेस का क्राइटेरिया क्या हम ये कह सकते हैं कि एक मर्द के लिए, एक रजुल के लिए सक्सेस का क्राइटेरिया ये है कि वो ही उसके अंदर ये कैपेबिलिटी और एबिलिटी पैदा हो कि वो घर को मैनेज कर सके।
1: देखिए, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना
0: जी,
1: घर को लीड करना,
0: जी
1: ये मर्द की जिम्मेदारी है ना। तो वो जो आयत है अर्रजाल कवामून अला निसा, तो वो इसीलिए कि मर्द लीडरशिप को घर में मुख्तलिफ एज, मुख्तलिफ जेंडर और मुख्तलिफ रोल्स जो लोगों के हैं उनको लीड करे, उनको मैनेज करे,
0: उनको मैनेज करे।
1: जब वो इसमें सक्सेसफुल होगा तो वो उससे बड़ी लेवल्स पे फिर जाता जाएगा, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि शायद वो एक कंपनी का बहुत अच्छा सीईओ हो लेकिन वो अपने घर के अंदर बिल्कुल फेलियर होगा, ठीक है। ये ऐसा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं,
0: क्योंकि उसको लगता है जो स्किल मुझे कंपनी में चलाने के लिए चाहिए वही स्किल से घर भी चलेगा,
1: वो नहीं चलेगा, जबकि वो नहीं चलेगा। आप सबको बेच सकते हैं, दुनिया को चीजें बेच सकते हैं, लेकिन आप घर वालों को नहीं बेच सकते क्योंकि वो आपके इन एंड आउट सब कुछ जानते हैं। अच्छा, मर्द के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है मियां बीवी रिलेशनशिप में कि मर्द जो कमिटमेंट कर रहे हैं ना वो पूरी करे। और अक्सर शोहर जो वादे करते हैं अपनी बीवी से या बच्चों से उसको पूरा नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होता है, ट्रस्ट लेवल खत्म हो जाता है। एक दफा आपका ट्रस्ट किसी से खत्म हो गया तो वो बिल्ड नहीं हो पाता। आज के दौर में आप देख रहे हैं करंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने कॉमन होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया, सिर्फ मोबाइल यूज करने पे, सिर्फ मोबाइल ना देने पे इतने झगड़े हो रहे हैं मियाँ बीवी के दरमियान कि आप मेरी प्राइवेसी में इंटर ना करें, और वो बीवी को डाउट हो जाता है कि मियाँ किसी से बात कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है, डिवोर्स ले रहे हैं। यानी बजाय इसके कि हम बैठ के मसले को डिस्कस करें, सॉल्व करें, वो दूसरी तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं। या मर्द या औरत, दोनों दोनों में ही केसेस ज्यादा है जो दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं
0: जी।
1: तो आप देखें कि जिस पर्पस के लिए खुदा ने बनाया था मियाँ बीवी का ये मुकद्दस रिश्ता, कि जिसके जरिए वो और उनके ईमान में इजाफा होता और वो खुदा से नज़दीक होते, अच्छी सोसाइटी में बच्चे आते, सब कुछ होता, वो बिल्कुल ही टर्न हो गया, एक अलग डायरेक्शन और डायमेंशन में जाना शुरू हो गया कि जहां शादी का सोच के लोगों को अब खौफ आने लगे। बल्कि बहुत सारे लोग जो गलत सोचते हैं वही सोचते हैं कि अगर 50% दुनिया में डिवोर्स रेट हो रहा है तो आई कैन बी द नेक्स्ट विक्टिम, ठीक है, तो मैं क्यों शादी करूं। यानी मेरे पास
0: मैरिज कैन बी वेरी स्कैरी,
1: बिल्कुल, वो कहते हैं कि मैं क्यों व्हाई शुड आई टेक द रिस्क। अब आप सोचें कि हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव हम मुसलमान लोगों के लिए इतना नेगेटिव हो गया कि अब वो कहते हैं कि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा पैदा करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक कमिटमेंट है, इट्स अ पेन, आई वॉन्ट टू हैव एंजॉयमेंट, आई वॉन्ट टू हैव प्लेजर। तो आप देखें पूरा इस्लामिक डायरेक्शन फोकस ही चेंज हो गया। जब आप नई नस्ल की फिक्र ही चेंज कर देंगे तो उनके लिए मैरिज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो कहते हैं वी विल मैरी एट द एंड, यानी आखिर में लाइफ के जब 40s में पहुंचेंगे तो फिर देन वी वो भी सोशल प्रेशर की वजह से कर लेंगे, वरना तो वो भी ना करते।
0: तो हाँ, सॉरी, कंप्लीट करें
1: जी,
0: कंप्लीट कर रहे हैं।
1: तो फिर हमें जैसे कि आप बता रहे ना कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, तौहीद महवर हमारी जिंदगी होनी चाहिए, हमें खुदा का अब बनना है, तो ये फिक्र ही छिन गई है। अब हमारी फिक्र ही दूसरी हो गई है, यानी हम शादी किससे, अपनी बेटी की शादी करते हैं।
0: अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कि हमारे अहकाम में मुस्तहब अमल है कि जब शादी होती है तो बीवी के पैर धोते हैं पहली रात में
1: जी,
0: और पैर धो के वो पानी को, जो मुस्तहब अमल है जो किताबों में भी लिखा है, जो
1: जी, जी, जी।
0: तो पैर धो के उसके
1: छिड़कते
0: हैं घर के अंदर।
1: जी, जी, जी।
0: और दूसरी चीज ये है कि उसके को जो पल्लू होता है, दुपट्टा होता है, उस पे नमाज पढ़ते हैं दो रकात।
1: सही है,
0: क्या है कॉन्सेप्ट, आप मुझे बताएं।
1: देखिए, ये शुरू से ही ये कॉन्सेप्ट है कि इसकी बरकतें आए घर में, यानी वो लड़की का इस्लाम में कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर जो कुरान की आयत है कि तुम निकाह करो उससे तुम्हारा रिस्क खुदा बढ़ाएगा, ठीक है ना, तो उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि औरत अपना रिस्क लेकर आती है, बरकत लेकर आती है। तो आप जो उसके दुपट्टे में नमाज पढ़ रहे हैं और आप

0: जो उसके पैर धो रहे हैं, तो आप उसको एज अ बरकत ले रहे हैं जिंदगी में, खुदा उसको आपकी जिंदगी में एज अ नेमत भेज रहा
1: पहले दिन ही खुदा तुम्हारी नफ्स को तोड़ देना चाहता है, भाई चल पैर धो। तुझे लग रहा था कि तू बहुत बड़ा वली है, आप पैर धो, तू पैर धोने से स्टार्ट कर जिंदगी को। यानी ये
0: हाँ
1: इसको अगर इस तरीके से देखा जाए,
0: हाँ
1: तरबियती लिहाज से अगर देखा जाए, कि एक मर्द के लिए एक औरत के पैर छूना, ठीक है ना, और पैर छूना और उसके पैर धोना एक मर्द के लिए, उसके लिए मैं मर्द हूं और ईगो की
0: हाँ
1: बात होती है,
0: हाँ
1: मुस्तहब अमल में खुदा ने कहा कि पहले दिन से तू तू मर्द नहीं है, तू अब्द है। यानी ये तसव्वुर जो है, यानी कि
0: सही है,
1: तुमको मर्द के क्राइटेरिया से निकाल रहा है,
0: ठीक
1: लेकिन
0: है।
1: खुदा बोल रहा है तुम वो मर्द है तो जो अब्द है। यानी अल्लाह जब तुम्हें कहे पैर छूने के लिए, तो पैर भी छूने के लिए तुम तैयार हो जाना।
0: हाँ वो इस ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है जो
1: जी
0: आप इस पर्सपेक्टिव से जो इस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं।
1: जी
0: ये गालिबन ये पर्सपेक्टिव इस तरह देखा नहीं जाता है,
1: जी
0: बल्कि ये इस तरह पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि ये एक हमारी सुन्नत है
1: जी
0: जो एक खैर बरकत के लिए है। लेकिन अगर मर्द की ईगो को तोड़ा जा रहा है कि वो औरत के जैसे कहते हैं पैर धुला रहा है, तो इस्लाम चाहता है कि मर्द औरत की खिदमत करे, औरत के नाज उठाए,
1: जी
0: क्योंकि इसी में मोहब्बत का इज़हार होता है, इसी में चाहत का इज़हार होता है, और कोई हर्ज नहीं है। यानी ये
1: कोई
0: रिलेशनशिप
1: हर्ज
0: ऐसे ही
1: नहीं है,
0: है,
1: या बेटर है,
0: यानी
1: यानी
0: इस नेगेटिव उसमें से ये
1: हाँ
0: बेहतर है और
1: हाँ
0: पॉजिटिव उसमें तो ये मोहब्बत की निशानियों में से है
1: निशानी
0: ना।
1: में से
0: अगर
1: कि आप
0: मियाँ
1: मोहब्बत का इजहार
0: इजहार
1: करें।
0: कैसे करें।
1: यानी हमारे यहाँ तो रिवायत है जो वाजे तौर पर, कि अगर शौहर बीवी से, जो एकदम प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं बीवी और शौहर के, वहां पर कहा गया है कि जब तुम वहां से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे गुनाह ऐसे माफ कर दिए जाते हैं जैसे दरख्त में से पत्ते झड़ जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल
1: यानी
0: ऐसे।
1: इतनी वाजे तौर पर हमारे वहां
0: हाँ
1: ह्यूमन रिलेशनशिप्स को इतनी वैल्यू दी
0: वैल्यू
1: गई है।
0: दी गई।
1: मुझे लगता है कि आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आई कि वो जो दीन का पर्सपेक्टिव हमारे वहां था ना, कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, आजादारी करो, ये दीन है। हस्बैंड वाइफ रिलेशन दीन नहीं है।
0: हाँ, क्योंकि हमारे मेंबर जो है ना वो इन
1: जी
0: चीजों को डिस्कस नहीं करता ना। ये मियाँ बीवी रिलेशनशिप, औलाद की तरबियत, माँ बाप के साथ जो और रिलेशनशिप
1: हम
0: की
1: करते हैं
0: चीजें
1: तो फिर उसके बाद सुनते भी हैं कि क्यों कर रहे हो
0: बहरहाल,
1: मौलाना
0: ये आपका
1: ये
0: माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हौसला दिया है कि आप ये सारी बातें सुनते भी हैं और फिर जवाब भी देते हैं। और खुदा आपको
1: जी
0: सलामत रखे कि आप ये
1: लाजमी
0: काम को हम जारी और सारी रखें।
1: जी
0: सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं,
1: जी
0: अगर हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि हर देखें दो जनरेशन जा चुकी है मिसाल के तौर पे, अब वो वैल्यू जो हमारे परदादा दादा लोगों ने जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी है, वो वैल्यूज अब हमारे सामने नहीं है, ठीक है ना। हमारे माँ बाप की वैल्यूज अभी हमारे सामने, और जिस तरह से वैल्यूज डिक्लाइन हो रहे हैं और जिस तरह से खुराफात आ रहे हैं, तो आप बताएं नई जनरेशन का क्या होगा।
1: यानी जो पेरेंटिंग आज के जमाने में जितनी टफ है, पिछले मतलब शायद सदियों में कहीं इतनी पेरेंटिंग
0: नहीं,
1: टफ नहीं
0: नहीं
1: रही
0: थी,
1: होगी
0: लेकिन जितनी अवेयरनेस आज
1: आज
0: पेरेंट्स को है
1: पे,
0: उतनी पहले भी
1: पहले
0: नहीं
1: भी नहीं
0: थी।
1: थी। अगर
0: रेडियोज
1: आज
0: के हैं,
1: कोशिश करें, यानी
0: हाँ
1: तलाश करें,
0: हाँ
1: कोशिश करें, अगर वो मैच देखेंगे तो मैच की इंफॉर्मेशन होगी, बच्चों की तरबियत के बारे में कुछ देखेंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा
0: अच्छा
1: ना।
0: मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ आ
1: जी
0: रही है ना वो ये कि बहुत सारे पेरेंट्स आज से 10 साल पहले वाले पेरेंट्स से ये वाले पेरेंट्स ज़्यादा
1: बेटर।
0: कंसर्न है, ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बच्चों पे काम करना चाहते हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशायन चीज़ है।
1: जी
0: और लेकिन साथ साथ ये भी है कि टाइम नहीं है, दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया सोसाइटी में। अब वो दोनों जो वर्किंग पेरेंट्स हैं ना, तो इस ये बच्चे ना डिस्टर्ब हो गए।
1: लेकिन अजीम साहब, यानी आपसे आपकी नजर लेना चाह रहा हूं कि क्या ये आइडियल है हस्बैंड वाइफ का काम करना, या ये आइडियल है कि हस्बैंड इतना कमाए कि वो घर चलाए और वाइफ जो है वो घर को मैनेज करे। मैं फेमिनिस्ट औरतें जो है मेरे से भी चिड़ने लगेंगी, बोलेंगी मौलाना हम, लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस, पर्सपेक्टिव ऑफ बच्चों को टाइम देना, बच्चों को अटेंशन देना, घर पे किसी का होना, किसी का हुजूर, नोबडी कैन रिप्लेस अ मदर,
0: सही।
1: तो ये एक क्लियर है। अगर मर्द इतना कमाता है, मिसाल के तौर पर मर्द की सैलरी है मसलन फॉर एग्जांपल $10,000, ठीक है ना, और मर्द इतना कमा रहा है कि बीवी को इज्जत भी दे, रिस्पेक्ट भी दे, बीवी को ऑनर भी करे, ऐसा नहीं कि तेरी कोई औकात नहीं, बल्कि वो समझे कि कितनी वैल्यूएबल चीज़ है जो बीवी मेरी कर रही है, बच्चों की तरबियत या बच्चों की खिदमत, क्या ऐसी सिचुएशन में आप सजेस्ट करेंगे कि औरत जाए बाहर काम करे?
0: देखिए डिपेंड करता है कि हम औरत का क्या रोल डिफाइन करना चाह रहे हैं।
1: जी
0: एक औरत जिसने ज़िंदगी में तालीम हासिल की है, क्वालिफाइड है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो वो यहाँ देखेगी कि इस मोमेंट में उसका क्या रोल बनता है, हम पूरी लाइफ

0: देखेंगे ना, हम
1: जी
0: सिर्फ एक फर्स्ट 5 ईयर्स तो नहीं देखेंगे,
1: जी सही
0: हम ये
1: बात,
0: देखेंगे पूरी लाइफ स्पैन में। हो सकता है कि वो शुरू के 5 साल 10 साल बच्चे को टाइम दे,
1: जी
0: उसके बाद वो सोसाइटी को टाइम दे, और बच्चे को कम
1: सही।
0: टाइम दे क्योंकि बच्चा कॉलेज वाला हो गया है, यूनिवर्सिटी वाला हो गया, या मिसाल के तौर पर मेच्योर हो गया।
1: एक मैं एग्जांपल दूं आपकी बात को,
0: बिल्कुल
1: आप कंप्लीट
0: बिल्कुल
1: करिएगा। खानुम वो है, डॉक्टर है ईरान में, खानुम लब्बाफ नाम है उनका। तो हम उनसे, लेडीज कैंप था, हम सब लड़कियों को ले गए थे वहां पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, 5-स्टार हॉस्पिटल, उसके अंदर डीन थी, यानी फेमस डॉक्टर हैं, सब कुछ है। तो उन्होंने बताया, मेरा जो उनके 8 बच्चे हैं,
0: माशाल्लाह
1: 8 बेटे हैं माशाल्लाह, तो और एक लड़की भी है शायद मेरे, जो मुझे जहन में इस वक्त है। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने जो मेरा 8वां बच्चा जब हुआ था, मैं 48 ईयर्स की थी,
0: उफ़ो
1: यानी फोर्टी एट
0: माशाल्लाह
1: ईयर्स की थी जब मेरा 8वां बच्चा
0: 8वां बच्चा हुआ।
1: हुआ। फिर उन्होंने बताया कि जब इनकलाब आ गया और इमाम खुमैनी के पास हम लोग गए, और हम लोग एक्टिव थे, वो जेल जा चुकी हैं, इनकलाबी हैं, सब है, डॉक्टर भी हैं, सब कुछ है। फिर उसके बाद उनको इमाम खुमैनी ने उनसे कहा कि अभी तुम्हारी जिम्मेदारी, जब बच्चे हो गए इनकलाब के बाद, तुम्हारी अभी जिम्मेदारी तरबियत, और इतने साल तक तुम्हारी प्रायोरिटी ये है कि तुम तरबियत करो, ठीक है। फिर वो तरबियत का एज गुजरने के बाद, हमारा ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि औरत घर पे रहे कुछ, यानी नहीं, जब बच्चे बड़े हो गए तो औरत कंट्रीब्यूट करे। कि आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूट करना या जॉब करना जिसके अंदर आप एक बड़ी
0: हाँ
1: मल्टीनेशनल कंपनी को कंट्रीब्यूट कर
0: कंट्रीब्यूट
1: रही
0: कर
1: है।
0: रहे हैं। हाँ ये
1: तो
0: बहुत
1: ये
0: बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये।
1: हाँ, क्योंकि मैं एक मिसाल के तौर पर, कोई एक गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई एक डॉक्टर है, कोई एक ऐसा काम कर रही है जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन का एस्पेक्ट मौजूद है। लेकिन एक ऐसा जॉब है कि सिर्फ जॉब है,
0: हाँ
1: उसके अंदर सिर्फ पैसा कमा रहे
0: पैसा
1: हैं,
0: कमाना।
1: लेकिन ये एहसास हो रहा है कि आई एम ऑल्सो अर्निंग, आई एम ऑल्सो इक्वल, आई एम ऑल्सो केपेबल। क्या इस्लाम इस चीज को प्रमोट करता है?
0: देखें ये तो तयशुदा बात है कि इस्लाम का जो पर्सपेक्टिव है वो ये कि इस्लाम ने बहुत ओपन चीज़ों को रखा है कि
1: जी
0: आप अपनी लाइफ को किस किस्म डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं,
1: जी
0: क्योंकि वेरिएशन है,
1: जी
0: आपके पास चॉइस है कि आप जन्नत के पहले लेवल पे जाना चाहते हैं या जन्नत के 10th लेवल पे जाना
1: जी
0: चाहते हैं। ये तो आपके अपने विजन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने गोल के ऊपर डिपेंड करता है।
1: सही
0: हम तो देखेंगे हमारे आइम्मा का सीरा क्या है, हमारे हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह का
1: सलाम
0: सीरा क्या है, हज़रत ज़ैनब
1: सलाम,
0: सलामुल्लाह का सीरा क्या है, हज़रत मरियम का सीरा क्या है, यानी जो ख़वातीन के सीरा कुरान में
1: रोल
0: है, रोल
1: मॉडल्स
0: मॉडल्स
1: हमारे
0: का क्या है,
1: लिए।
0: हमारे आइम्मा ने हमें क्या हिदायत किया, हमारे अम्बिया ने हमें क्या हिदायत की। तो फंडामेंटल काम एक खातून का ये है कि बच्चे की तरबियत करे। अगर आप बच्चे की अच्छी तरबियत करने के साथ साथ आप और भी काम कर सकती हैं तो इस्लाम आपको मना नहीं करता।
1: स्पेशली सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना,
0: बिल्कुल
1: और जो जो कौमें, जिंदा कौमें होती हैं, वहाँ ख्वातीन सिर्फ घर में नहीं रहती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं
0: हाँ
1: सोसाइटी के अंदर, स्पेशली
0: हाँ
1: सोशल कामों में,
0: बिल्कुल
1: और कंट्रीब्यूट करती
0: बिल्कुल
1: हैं। वरना
0: बिल्कुल।
1: सोसाइटी में अगर औरतें काम ना करें तो सोसाइटी
0: देखें इमाम हुसैन की कामयाबी
1: जी
0: का एक जो सेहरा है वो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह को जाता है ना,
1: बेशक
0: उसके बाद वो पूरे हज़रत फातिमा का अपना एक रोल है विलायत के लिए,
1: जी
0: ठीक है।
1: बेशक
0: तो ख़वातीन ने अपना रोल प्ले किया है हमेशा से,
1: जी
0: हज़रत खदीजा ने अपना रोल प्ले किया है,
1: जी
0: जो तो ये रोल प्लेइंग है। अब ये देखना है कि कहाँ कैसे इसकी ज़रूरत है,
1: जी।
0: यानी हम तमाम
1: लेकिन
0: वैल्यूज़ को बचाते हुए।
1: हाँ, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो, जैसा कि तरबियत जो है,
0: हाँ वो
1: वो
0: फर्स्ट
1: अगली
0: प्रायोरिटी
1: जनरेशन की वो प्रायोरिटी है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज
0: नहीं होनी
1: नहीं हो
0: चाहिए।
1: सकती। आयतुल्लाह खामेनेई की भी एक स्पीच है, उनमें उसमें उन्होंने वाजे तौर पर कहा कि खातून काम करे, उनकी शर्तों में से एक शर्त ये कि कैसा काम करे कि औरत की इज्जत और शान और मंजिलत के बराबर हो, ऐसा काम। और फिर उसके अंदर एक शर्त वो करते हैं कि अगर वो अपनी नफ्स की पाकीजगी, अपनी इज्जत की पाकीजगी को बचा सकती
0: बचा
1: है, उसको
0: सकती है।
1: लगता है तो करे। और एक चीज उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में क्लैश हो रहा है बच्चों की तरबियत
0: हाँ
1: और काम में, तो आपको काम को सेक्रीफाइस करना है कि बच्चों की तरबियत
0: तरबियत नहीं
1: सेक्रीफाइस
0: नहीं
1: नहीं हो
0: करनी,
1: सकती
0: क्योंकि
1: है।
0: आप जो लोग अक्सर ये कहते हैं हम कमा इसलिए रहे कि हम बच्चों पे इन्वेस्ट करें, है ना, हम बच्चे को अच्छे स्कूल दें अच्छे कॉलेज दें इसलिए हम कमा रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट तो दीन आपसे नहीं मांग रहा है इस वक्त, दीन मांग ये रहा है कि आप बच्चे पे इन्वेस्ट करें,
1: हाँ सही बात,
0: आप अपनी एनर्जी वेल्थ बच्चे पे लगाएं, यानी आप टाइम
1: हाँ
0: दें मोहब्बत दें प्यार
1: हाँ
0: दें। देखिए हम दे ही कह सकते हैं बचपन में बच्चे को, जो असल चीज़ माँ देती है ना फर्स्ट 2 ईयर्स में, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी है जो माँ बच्चे को देती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अगर हम फॉलो करें तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन से यानी आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है बच्चे के अंदर, और जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे दूध नहीं पिला रही होती बल्कि वो अपने तमाम जो उसकी एनर्जी है वो बच्चे में ट्रांसफर कर रही होती है, क्योंकि वो इबादत है जब वो बच्चे को मोहब्बत से देखती है।

0: तो पॉजिटिव एनर्जी उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है, वो दूध में ताकत भी आ जाती है और ज्यादा। तो इस्लाम का प्राइम कॉन्सेप्ट ये है कि माँ अपने मोहब्बत सेक्रीफाइस सबको बच्चे में ट्रांसफर कर रही है, ठीक है ना। वो बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट का एज है ये 2 ईयर्स। अगर माँ होगी जॉब पे और बच्चा होगा आया के पास, तो वो किसकी एनर्जी लेगा, किससे सब कुछ लेगा, वो आया से लेगा ना।
1: तो ये प्रायोरिटी हमारे लिए क्लियर है, तो कि हम खवातीन के
0: हाँ
1: जॉब करने के मुखालिफ नहीं है,
0: नहीं नहीं कहे
1: लेकिन प्रायोरिटी उसकी जो है वो हमेशा ये है
0: हाँ
1: कि ये अच्छा। अभी हमने आधी गुफ्तगू यहाँ तक की कि मसलन बीवी अगर गुस्से में हो और इस टाइप
0: अच्छा
1: की,
0: हाँ
1: अभी सास बहू के अगर
0: जी
1: प्रॉब्लम्स में हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और मैसेजेस जो आते हैं वो सास के मैसेजेस आते हैं कि भाई हमारी सास ऐसी है, हमारी सास ऐसा बोलती है, हमारी सास, हमारी सास, हमारी सास, क्या प्रॉब्लम है?
0: मुझे तो परेशानी ये होती है कि ख्वातीन सबसे ज़्यादा जो है ना, उनको ये कंप्लेन होती है कि ख्वातीन पे जुल्म होता है पूरी दुनिया में,
1: जी,
0: मर्द ख्वातीन पे जुल्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर आके हम ये देखते हैं कि ख्वातीन ही ख्वातीन
1: सबसे
0: पे
1: ज्यादा
0: ज़्यादा जुल्म
1: खवातीन।
0: करती हैं, जबकि एक दूसरे का सबसे ज़्यादा एहसास भी वही रखती हैं। तो ये ताज्जुब होता है कि एक खातून जो अभी बहू है वही सास बनती है, फिर वो सास बन के वो भूल जाती है सब कुछ, वो फिर वही वही रिपीट जुल्म शुरू कर देती है। तो ये ना इट्स अनसॉल्वेबल फेनोमेना कि ये ऐसा क्यों इनके करती हैं, जबकि अगर वो वाकई एहसास रखती होंगी, ऐसी सारी सासें नहीं होती, हम सोसाइटी में देखते हैं ऐसी सासें हैं जो
1: बहुत
0: बहुत मेच्योर
1: पॉजिटिव
0: हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। और आज के करंट दौर में अगर हम इस पॉलिसी को अपनाएं
1: है जी।
0: कि सास और बहू अलग से रहें, बेशक एक घर में हो लेकिन उनका सेपरेट हो, उनका अपना किचन सेपरेट हो या उनका अपना प्राइवेसी उनकी अपनी हो, चाहे वो अब एक एक फ्लोर पे हो, दूसरा दूसरे फ्लोर पे हो, या एक मकान हो तो उसके सामने दूसरा मकान हो, तो ये उससे बेहतर उनकी जिंदगी गुजर सकती है उसके मुकाबले में कि वो साथ रहकर झगड़े करते रहें और दिल भी खराब हो, बच्चे भी खराब हो, एनवायरमेंट भी खराब हो, मर्द भी परेशान हो, सब टेंशन में हो और मेडिकल उसके चार्जेस भी उनके बढ़ जाएं। तो उससे बेहतर ये है आज के दौर में कि वो सेपरेट रह लें, इज्जत के साथ रह लें और जिंदगी पीसफुली गुजारें। यानी
1: खुसूसन
0: मैं
1: ऐसी फैमिलीज जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे
0: बहुत
1: हो।
0: ज्यादा हाँ ऐसी फैमिलीज
1: तो लेकिन ऐसी फैमिलीज भी हैं जो मोहब्बत से रहती
0: तो
1: हैं
0: कर
1: एक
0: रहे हैं
1: दूसरे के
0: उसे
1: साथ, और यानी तो वही चीज जो आगा मैं कह रहा था कि जो हम लोग ने स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये जो पूरे रिलेशन है सास बहू हो, इसके अंदर खुदा और शैतान को कैसे तलाश करें, क्योंकि जब तक खुदा और शैतान तलाश नहीं होगा, तो मसलन एक मसलन सास को लग रहा है ये मैं पावर में हूं तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर देता है या कर देती है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता है कि मैं पावर में हूं, मैं कर सकता हूं। हमारे यहाँ रिवायत है कि रोज़े कयामत खुदा तुम्हारे साथ वैसा बिहेव करेगा जब तुम पावर की हालत में थे और तुमने कमजोर के साथ बिहेव किया था।
0: सही है। देखिए ना ये तो मेरे ख्याल से सब हम सब के लिए आया है कि जो लोग मुतदयन होते हैं, दीनदार होते हैं, तो वो तो अपने आप को प्रायोरिटी में कभी नहीं लाते ना, वो तो दूसरे वाले को प्रायोरिटी में
1: ईसार
0: लाते हैं।
1: उनकी जिंदगी में गालिब
0: हाँ
1: होता है।
0: हाँ तो वो ईसार, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट में आप बोला कि वो ईसार करते हैं, कुर्बानी करते हैं, लिहाज करते हैं, तो वो फिर वो एटीट्यूड ही डिफरेंट होता है। लेकिन हम लोग जिस कल्चर में पले बड़े हैं और सदियों से सुनते आ रहे हैं, चला आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये नहीं करेंगे तो फिर हम सास और बहू भी सही से नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप सास बन जाते तो आपके ना लेंस चेंज हो जाता है, जब तक आप सास नहीं होती आपका लेंस दूसरा होता है। तो ये हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसे ही है, वो करवाता भी है आपसे। यानी अगर कोई अच्छी जिंदगी गुजार भी रही होंगी ना सास बहू, तो दूसरी उनकी जो दोस्तें होंगी ना, वो आके ऐसा एनवायरनमेंट बना देंगी आपके लिए कि आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। यानी ऐसा है, अनफॉर्चुनेट है लेकिन ऐसा है। अब ऐसी सूरत हाल में जहां ऐसा है, या तो वाकई इंसान अपनी सलाह कर ले, चेंज कर ले अपना पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है और जिंदगी खराब हो रही है, तो उससे फिर बेहतर है कि वो सेपरेट हो लें, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग से और जिंदगी गुजारे, वो ज्यादा बेहतर है, सबको सुकून मिलेगा, सब अच्छे से रहेंगे।
1: शायद हमारे व्यूअर्स लोगों में से बहुत सारे जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे मौलाना सेपरेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो एनीवेज एक वो है, ओपिनियन है, और ओपिनियन आगा की जो है वो इतने सारे केसेस जो हैं, शायद 1000 से ज़्यादा केसेस आगा ने डील किए हैं, हैंडल किए हैं फैमिलीज से, पेरेंट्स से बात करने के बाद, उसके बाद उनका नज़रिया है। आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं और ये आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन है। तो बस सास अगर एक है और उसे अगर बहू जो है उसके उसके साथ डील करना है तो आप उसको क्या प्रैक्टिस

0: टिप्स देंगे कि बहू के साथ कैसा बिहेव करें?
1: देखिए, हमारी एक कम्युनिकेशन स्किल अगर किसी के अंदर अच्छा होगा ना, कॉन्फिडेंट होगा इंसान, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे होंगे, उसने अपने अंदर पेशेंस को डेवलप किया होगा, विजडम से काम लेती होगी, तो वो सास के साथ भी रह सकती है। मैं करंट सिचुएशन के हवाले से बता रहा हूँ
0: जी
1: कि हमें नहीं आता कि हम सामने वाले से डील कैसे करें। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप सामने वाले को ज़्यादा लेफ्ट एंड राइट जाने नहीं देंगे, यू विल पुट देम इन इन द बॉक्स, ठीक है ना। आप उसको कॉर्नर करना जानते होंगे, आप उसको डील करना जानते होंगे। हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है, हमारे लोग डील करना नहीं जानते और वो फिर नेगेटिव होती चली जाती है चीज़ें। तो या तो हम अपनी नई जनरेशन को ट्रेन करें कि हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू पुट योर थिंग्स इन प्लेस, और सामने वाले को भी एजुकेट करें, यानी सोसाइटी को एजुकेशन की ज़रूरत है ना। अगर वो सास है या बहू है, अगर वो प्रॉपरली एजुकेटेड है, पूरा एनवायरनमेंट एजुकेटेड है, तो टेबल पे बैठ के सॉल्व हो जाएंगे ना मसले। लेकिन हम देख रहे हैं ऐसा हो नहीं रहा है, तो जो हो नहीं रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, बर्बादियां हो रही है ना। पूरी पूरी नस्लें आपस में एंटी, भाई बहन लड़ रहे हैं और आपस में एक जंग का समा बना हुआ है जो बहुत अफसोसनाक है। ऐसी
0: सही।
1: सूरत हाल में तो फिर आप सेपरेट ही रह ले भाई।
0: तो अगर अगर साथ में रहते हैं, बिलफर्ज साथ में रहते हैं,
1: हाँ
0: और अगर आप उनको एक सास को टिप देना चाहते हैं कि भाई टिप्स देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह प्रैक्टिकल नहीं है अलग रहना साथ
1: ठीक
0: में,
1: है,
0: हाँ,
1: तो देखिए सबसे,
0: तो
1: हाँ
0: प्रैक्टिकल टिप क्या देंगे?
1: प्रैक्टिकल टिप ये है कि भाई आप अब ये उस मियाँ बीवी जो नए बेटा बहू है, सास बहू है, शौहर है बीवी है, ये उनकी एक नई जिंदगी स्टार्ट हुई है, लेट देम लिव देयर लाइफ, ठीक है ना। आप इंटरफेयर ना करें उनके कामों में, आप अपने जोन में जो आपको करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, उनको उनकी जिंदगी, उनकी
0: जीने
1: अंडरस्टैंडिंग
0: दे।
1: होने दें। वो सीखेंगे, गलती करेंगे, आप गाइड कर सकते हैं लेकिन आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप अपना इन्फ्लुएंस करके उनके डिसीजंस को आप खराब ना करें, आप अपनी बात बता के रुक जाए, ठीक है, और उनको करने दें जो वो करना चाहते हैं। लेकिन अगर माँ ये सोचने लगेगी ना, मिसाल के तौर पे कि मैंने मैंने ड्राइंग रूम ऐसे सेट किया है, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, तो फिर आप जिसको घर लेकर आ रही हैं उसकी कोई से नहीं है, वो इंसान नहीं है, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आप सामने वाले को वेलकम करेंगे और उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे और उसके डिसीजन को सॉरी वैल्यू देंगे, तो ये डिफरेंट हो, तो ये डिफरेंट चीज हो जाएगी। तो ठीक है, अगर अगर आप कह रहे हैं कि सास के लिए नंबर वन टिप तो यही होगा कि वो उसको वेलकम करे, उसको ऑनर दे और उसके एडवाइस को भी वैल्यू
0: अप्रिशिएट
1: दे,
0: करें।
1: अप्रिशिएट करे,
0: जी
1: वैल्यू दे, उसको अहमियत दे। पहली चीज ये, जो यानी सामने वाला आ रहा है उसको पता हो कि
0: जी पानी
1: मुझे,
0: पी लीजिए आप, सर थोड़ा
1: जी
0: सा।
1: शुक्रिया।
0: जी
1: तो यानी पहली बात तो ये होगी कि सामने वाले को ये पता चले कि मैं जो आ रही हूँ उस घर में, मैं इस घर की एक इम्पॉर्टेंट फर्द हूँ और मेरी भी, मेरा कंट्रीब्यूशन को भी वैल्यू दी जाती है, मेरी एडवाइस को भी सुना जाता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर उसकी कोई ख्वाहिशात हैं जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, तो आप उसको ओवर रूल ना करें, उसको उसको पूरा करें। तीसरी चीज़ ये कि उसकी और मियाँ बीवी की जो रिलेशनशिप है उसको टाइम दें, उनको लर्न करने का मौका दें। यानी जो मैं केसेस जानता हूँ उसमें माँ इस हद तक, ऐसे ऐसे भी घर हैं कि जहाँ पे माँ साथ सो रही है उस कमरे में, ये कह के कि भाई मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ सोया है तो मैं जो है साथ सोया, वो दूसरे बेड पे वो सो रही है। एक्सट्रीम केसेस भी हैं, यानी मैं आपको
0: जी
1: बताना चाह रहा हूँ। या ये कि बेटा जो काम भी कर रहे हैं ना, वो माँ से आके पहले अप्रूवल ले रहा है, फिर वो काम होगा, वरना वो होगा नहीं। तो आपने बेटे कैसा तरबियत किया है कि जो अपने डिसीजन खुद ले नहीं सकता,
0: रजुल नहीं, मर्द नहीं
1: मर्द
0: हो,
1: नहीं हुआ ना, उसके डिसीजन उसके अपने है ही नहीं, और वो बीवी बेचारी जो है वो,
0: कैसे वली बनेगा? क्योंकि खुदा ने इसको वली बनाया है ना,
1: हाँ तो वो नहीं है
0: बीवी
1: ना, वो
0: का,
1: है ही नहीं।
0: वो वली कैसे बनेगा जब वो कोई डिसीजन खुद ले नहीं
1: हाँ
0: सकता है?
1: तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। तो इंटरफेरेंस की बात है, यानी उनको पता होना चाहिए सासों को कि मेरे क्या हुकूक हैं, मेरे बेटे के क्या हुकूक हैं, मेरी बहू के क्या हुकूक हैं, क्या मैं उसके हुकूक दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, ये है ना।
0: और अगर नहीं दे रही हूं तो मैं
1: तो मैं जवाब
0: जिम्मेदार
1: दूँ
0: हूं
1: तो
0: रोजे
1: रोजे
0: का।
1: दुनिया में भी भुगतूंगी और आखिरत में भी मुसीबत होगी,
0: जी
1: ठीक है। और फिर जो अखलाक है, बेनवाने
0: जी
1: बुजुर्ग, आपका क्या अखलाक होना चाहिए, उसका क्या अखलाक होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि आप बैठ के डिस्कस करें चीज़ों को ना, कम्युनिक अकलमंद आदमी जो तो बैठ के बात करता है, कन्विंस करता है या कन्विंस हो जाता है। तो इस एटमोसफियर को घर में बनाए, अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो भी रही है तो देन वी विल सिट डिस्कस एंड सॉर्ट इट आउट।
0: फॉरगिव करना कितना इम्पोर्टेंट है, बड़ों को, छोटों को, बड़ों
1: अगर
0: यानी
1: आप फॉरगिव
0: छोटों को।
1: करेंगे तो सामने वाला सीखेगा ना फॉरगिवनेस, ठीक है ना। तो मिस्टेक्स तो हमने भी किए, कोई आसमान से तो सीख के आया
0: बेटा
1: नहीं।
0: गलती करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहू अगर गलती करती है तो
1: हाँ
0: प्रॉब्लम
1: वो
0: है।
1: प्रॉब्लम हो जाती, उन्हीं की बेटी अगर गलती कर दे तो वो कोई बात नहीं हो।

0: और अगर दामाद कर दे तो एक अलग मसला है। तो
1: जी
0: ये जैसे फॉरगिवनेस का मसला है, इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। अब एक लड़की जो नई आई है, वो अपने घर से कुछ प्रैक्टिसेस लेकर आई है ना, कुछ वैल्यूज लेकर आई है, कुछ आदतें लेकर आई है जो इस घर की नहीं है, तो क्या वो छोड़ दे सब कुछ? वो नहीं हो सकता, वो लेकर आई है। तो आपको एडजस्ट एंड अडॉप्ट करना पड़ता है। हमारी सासें जो है वो अडॉप्ट नहीं करती, ये एडजस्ट नहीं करती, वो कहती है तुम्हें हमारे हिसाब से सब कुछ एडजस्ट करना।
1: अच्छा, इसके अंदर शैतान एक फियर भी क्रिएट करता है कि अगर मैंने इसको स्पेस दिया तो ये सर पे चढ़ जाएगी। ने पहले दिन से बीवी सोचती है, बहू सोचती है कि अगर मैंने सास को डोमिनेट करने दिया तो इसकी आदत हो जाएगी, तो मुझे डोमिनेट नहीं करने देना है। सास को बताया गया कि बीवी अगर तुम्हारी बहू जो है, अगर तुमने इसको कंट्रोल में नहीं रखा तो ये सर पे चढ़ जाएगी। अब ये दोनों ये गेम का गेम खेल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ,
0: वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं
1: जी।
0: तो ये तो सोच ही नेगेटिव है ना। इसका नेगेटिव नतीजा भी आएगा
1: जी,
0: है ना। लेकिन जब इस्लाम ने आके आपको कह दिया कि भाई आप हुकूक का ख्याल रखें, अखलाक से जिंदगी गुजारें, तो ये एटीट्यूड पैदा ही नहीं होगा कि आई नो माई लिमिट्स, आपको अपने लिमिट पता है, मुझे अपने लिमिट
1: ना
0: पता
1: उसको
0: है।
1: इन्हें कंट्रोल करना है, इन्हें ना इन्हें उनको कंट्रोल करना है। दोनों को अपने हुकूक खुदा ने बाउंड्रीज दी हैं, आपको उस बाउंड्री में रहना है और एक दूसरे के साथ अखलाक के साथ बिहेव करना है।
0: मिसाल के तौर पे एक लड़की है जो शादियों के आई है, उसको पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपने सास के लिए खाना बनाऊं, ससुर के लिए खाना बनाऊं, ये उसकी शरीय तौर पे उस पर जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमें यार अखलाक ने क्या सिखाया कि जाओ सास ससुर की भी ऐसी खिदमत करो जैसे तुम अपने माँ बाप
1: की
0: की करते
1: खिदमत।
0: हो। तो यहाँ पे सास ससुर को अप्रिशिएट करना चाहिए ना, लेकिन आप होता क्या है, बरअक्स होता है। तो ये एटीट्यूड हमारा गलत है। तो हमें सही करेंगे ना अपने एटीट्यूड को, सही करेंगे प्रैक्टिसेस को, तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी ना। तो हम गलती पे गलती किए चले जा रहे हैं।
1: यानी वो ईगो को, डोमिनेशन को और अपने वो नेगेटिव इश्यूज को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि खुशी और रहमत और हैप्पीनेस उसको सैक्रिफाइस और सुकून को सैक्रिफाइस करने तैयार हो जाए। दो चीजें, या सुकून को ले लो या ईगो को ले लो। अगर ईगो लेंगे तो सुकून चला जाएगा। तो इंसान बोलता है मुझे सुकून चाहिए,
0: लेकिन
1: लेकिन
0: सुकून के लिए काम नहीं कर
1: प्रैक्टिकल
0: रहा होता।
1: तौर पर ईगो पे, ईगो को सुकून पे डोमिनेशन।
0: बिल्कुल ऐसे ही, और पता है कि गलत कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। तो एक यानी ऐसे ऐसे केसेस मैं आपको बताऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि
1: बताएं, मैं हैरान होना चाहता
0: लोग किस तरह। यानी अब आपको पता है कि मियाँ शादीशुदा जिंदगी है, अभी लाइफ स्टार्ट हुई है, तो अब सर्दियां हैं, अब सास जो है ना वो गीजर ऑन करने नहीं दे रही। आप सोचें
1: इंडिया में एक और प्रॉब्लम आएगा कि माह रमजान में मुझे मैसेज आया कि मौलाना मेरा रोजा जो है वो बातिल हो गया। तो मसलन बातिल हुआ या नहीं, तो पहले उन्होंने बताया कि मसलन मैं अपनी बीवी को चूम रहा था, तो चूमते चूमते जो है वो मसलन मेरा रोजा खारिज, मसलन पानी खारिज हो गया, तो उसकी वजह से जो है क्या मेरा रोजा बातिल हो गया। तो मैंने शर्तें बताई ये वो कि मसलन भाई ऐसे है तो हो गया पानी के अंदर शर्त वगैरह, जो मैंने शर्तें बता दी। फिर उन्होंने बात में थोड़ा एक्सप्लेन किया तो बताया, मैंने पूछा भाई कि आपकी आदत इन्हें आप पहले के बारे में ऐसा है, आपको पता था नहीं पता था? तो बोले नहीं, इस माह रमजान में 2 बार हो चुका है।
0: सही।
1: मैंने पूछा भाई रात नहीं है सिर्फ सब चीज दिन में? तो बोलते मौलाना रात को अगर अगर हम लोग बीवी के करीब जाएंगे तो हमारा बाथरूम नीचे है, तो मेरी बीवी अगर जाएगी तो उसको सब ताने देंगे। यानी वो गुनाह करने तैयार है, नई नई शादी हुई है, कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे।
0: सही है।
1: रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट दिन में एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं, रोजा भी रखना चाह रहे हैं,
0: वो डिस्टर्ब हो रहा
1: है। एक ये प्रॉब्लम आगा कि दुनिया क्या बोलेगी, खुदा क्या बोलेगा।
0: वो तो
1: अभी इसके अंदर फैमिली जो है, भाई क्या शादी की है, गुनाह थोड़ी ना कर रहे हैं। गुनाह करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है,
0: ऐसे ही है,
1: लेकिन
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: हलाल काम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है लोगों
0: तो
1: को।
0: इस तरह के बहुत सारे चीजों में जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है और लोग कर रहे हैं, और लोग बाकायदा इसको अपना राइट समझ के कर रहे होते हैं। तो ये चीजें तो डिस्टर्ब कर देती है ना पूरी आपकी लाइफ को। तो फिर इसीलिए फिर ये मैसेजेस आगे पहुंचते हैं। यानी नई बहू जो होती है वो सास के बारे में अपने दोस्तों को बताती है, मेरी सास ऐसा करती है, मेरी सास, तो ऑटोमेटिकली हर चीज सास के लिए बुरी हो रही है, सास वाली चीजें बहू के लिए बुरी हो रही है, और वो रिवेंज ले रही है, वो एक दूसरे को तंग कर रही है, वो एक, तो ये माहौल तो हमें, ये तो जहालत की वजह से है, ये इग्नोरेंस की वजह से, ये नॉलेज ना होने की वजह से।
1: और जबकि इस्लामी कानून पर अमल करेंगे तो सुकून भी है, खुशी भी है, और घर के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, बच्चों के

0: फ्यूचर सिक्योर है, सिर्फ एक चीज करना है, अपने ईगो को कंट्रोल करना है।
1: देखें, मर्द की कामयाबी में माँ बाप की दुआओं का होता है या नहीं होता, सबको पता है। माँ बाप की दुआएं मिलेंगी तो हम कामयाब होंगे, ठीक है। हम रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे, सिले रहम करेंगे तो खुदा रिस्क में बरकत देगा, ये रास्ते खोलेगा। लेकिन हम खुद उल्टा सीधा सब कर रहे होते हैं, फिर हम चाहते हैं सब कुछ सेट भी हो। तो यानी हम अपने आप को खुद ही प्रॉब्लम में डालते हैं और फिर हम खुद ही परेशान भी होते हैं। तो अगर हम बेसिक इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, जो एक सिंपल प्रिंसिपल है कि आप सामने वाले को उसके लिमिट्स में रहने दें, खुद भी रहें, उसको भी रहने दें, उसके लिमिट्स में आप स्टेप ना करें, अच्छे अखलाक से पेश आएं, तो आपको सुकून मिलेगा ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत
0: जी और जीने दो,
1: जी और जीने दो। किस तरह से?
0: अहले बैत के रास्ते, अहले बैत के तरीके से।
1: अगर आप उसको रोल मॉडल मानते हैं, आप इमाम अली को रोल मॉडल मानते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल मानते हैं, तो क्यों नहीं उसके पैटर्न को अपनाते, क्यों नहीं उस लाइफ स्टाइल को अपनाते। इस्लाम तो चाहते हैं आप सिंपल जिंदगी गुजारें, अच्छी जिंदगी गुजारें, मोहब्बत के साथ रहें, शफकत के साथ रहें। तो ये ना टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता, ये बिल्ड करना पड़ता है।
0: कुल्लन सारी चीजें जो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, सारी चीजों का रूट जाके हमेशा जो है ना वो दीन पर और दीन की टीचिंग्स पर अमल करने पर खत्म होता है, तौहीद पर खत्म होता है। एक्चुअली इंसान क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका तौहीद कमजोर है, खुदा पे भरोसा कमजोर है। एक्जेक्टली,
1: असल बात यही है। क्योंकि देखें, तकवा का जो जो बॉटम लाइन है वो ये है कि आप कॉन्शियस होते हैं, आप गॉड कॉन्शियस होते हैं। यानी एक तर्जुमा जो तकवा के ना वो गॉड कॉन्शियसनेस है, यानी गॉड कॉन्शियस यानी आप अलर्ट हैं। जब आप अलर्ट होते हैं,
0: सीसीटीवी की तरह, आप खुदा जो है सीसीटीवी है और ये ऐसा सीसीटीवी है कि हर जगह चलता है।
1: अगर आप अलर्ट होंगे तो आप कभी जुल्म नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, और कभी आप अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में कोताही नहीं करेंगे, है ना। आप हर हमेशा खुदा को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। हर आप लोग
0: बीवी अगर ऐसा सोचे, शोहर ऐसा सोचे, सास ऐसा सोचे, ससुर ऐसा सोचे, हाँ,
1: तो आप जस्ट करने लगेंगे ना लोगों को।
0: तो आप हर जगह एक अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे खुदा की, खुदा तक पहुंचने के लिए, अपने मकाम को बड़ा करने के लिए। एक कम्प्लीटली डिफरेंट चश्मा पहन लिया है आपने। अब दुनिया सोच रही है ऐसा, आप कुछ और सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं यहाँ पर खुदा मुझसे क्या चाहता है।
1: अब आप एक बिल्कुल डायमेंशन चेंज कर देते हैं एक बात की। यानी एक खातून, मुतदयन खातून, उनके वो एक सख्ती में है शादीशुदा जिंदगी के बाद, उनसे पूछा ही जा रहा है कि भाई आप डिवोर्स क्यों नहीं लेती? तो कहती हैं कि अगर मैं सख्ती बर्दाश्त कर लूंगी तो मेरा खुदा खुश होगा, क्योंकि मैं नस्लों को बर्बाद नहीं होने देना चाहती। मेरे तलाक लेने से मेरे बच्चों पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन मैं इस सख्ती को इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि हमारे बाज अंबियाओं की बीवियों ने या बाज जालिमीन की बीवियों ने सख्तियाँ बर्दाश्त की अपनी नस्लों को बचाने के लिए। इसके लिए मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये पर्सनैलिटीज बहुत कम है जो जिसे कहते हैं कि सैक्रिफाइस करके जिंदगी गुजारें, क्योंकि अजर भी उतना ही बड़ा है।
0: हदीस है हमारे वहाँ के, मैंने हदीस के वो औरतें जो बद अखलाक शौहर को बर्दाश्त करती हैं, उनका अजर ये हो कि रोजे कयामत हजरत फातिमा जहरा के साथ उठाई जाएंगी।
1: तो अब ये सोच कब पैदा होगी?
0: जब चश्मा दीन का पहने।
1: तो अब इसमें कहीं ये मतलब नहीं है कि शोहर जुल्म करता रहे और बीवी
0: बर्दाश्त करे।
1: ये उस कॉन्सेप्ट से बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि
0: वो शोहर को तो पिटाई मिलेगी अगर वो करेगा, तो हम लोग इसको डिनाई नहीं कर रहे।
1: लेकिन साथ में आप अपनी नस्लों के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने राइट्स के डिफेंड करें, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन आप नस्लों को बचाने की बात करें तो उसका अजर अलग है। तो ये माइंडसेट भी तो डेवलप होने की जरूरत है।
0: आपने जो जुमला का, इसको थोड़ा मैं चाह रहा हूँ, राइट्स को डिफेंड करें। ये कभी कभी औरतें जो है झांसी की रानी बन जाती हैं, झांसी की रानी होती है ना, वो हर जगह जो है तलवार लेके कि मुझे मेरा राइट्स है, मुझे ये चाहिए, और ये सही और ये गलत है, और मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत है। यानी आप ये नहीं कहना चाह रहे, आप एक्सप्लेन करें।
1: मेरा कहने का मतलब ये है, इस्लाम कभी आपको अपने राइट लेने से नहीं रोकता, ठीक है ना। अगर आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो जुल्म के लिए हमेशा लड़ा नहीं जाता। जुल्म को हासिल, जुल्म से बचने का तरीका होता है, जुल्म को खत्म करने के सिविलाइज तरीके होते हैं, है ना। आप हर वक्त प्रोटेस्ट लेके तो नहीं शुरू हो जाते, आपके पास तरीका होता है कि भाई ये मेथोडोलॉजी है, इसके जरिए आप काम करें।
0: यानी कोई गलत है तो मैं भी गलत हो जाऊँ, ये सोल्यूशन
1: नहीं है। तो वही, यानी इस्लाम ये तो नहीं कह रहा कि एक जुल्म कर रहा है तो आपके जुल्म करे चले जाओ। नहीं, इस्लाम कह रहा है
0: अलाउ भी नहीं करता।
1: इस्लाम कहता है आप उसको रोके, अपने राइट्स के साथ रहें और अच्छे से रहें। सख्ती में एक ये सख्ती भी होती है कि एक दफा फाइनेंशियल सख्ती आ गई, है ना, एक दफा सब लोग घर में अच्छे हैं लेकिन तादाद ज्यादा है लोगों की, आप नहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते, है ना, वहाँ महरम ना महरम के इशूज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको रहना पड़ रहा है, तो अब एक

0: अगर आप अपने प्राइवेट घर में होंगे तो आप फ्रीली रहेंगे, लेकिन घर में दूसरे लोग भी हैं तो फिर आपको ख्याल करना पड़ेगा ना
1: कम्प्लीटली हर वक्त हिजाब पहनना,
0: तो
1: और
0: ये
1: गर्मी के मौसम में, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में खास
0: हाँ
1: तौर
0: सबके
1: पे।
0: लिए खाना भी बनाओ सबके लिए। अब कोई औरत इस तकलीफ में रह रही है, लेकिन वो ये कहती है कि भाई मेरे इस कुर्बानी से खुदा खुश हो रहा है, हम यूनाइटेड हैं, हमारी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं, हम बच्चों की भी इसमें परवरिश कर रहे हैं, तो खुदा उसको कितना रिवॉर्ड देगा, है ना।
1: तो वो इबादत की निगाह से देख रहे होते हैं
0: ये
1: सब चीजों
0: अगर
1: को।
0: हम सब इस तरह सोचने शुरू हो जाएं तो हम लोग की जिंदगी आसान हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे।
1: आप बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया। एज यूजुअल जब
0: मेरे
1: आपसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है।

0: सब
1: अगर
0: चीजें।
1: हम सब इस तरह सोचने शुरू हो जाएं तो हम लोग की जिंदगी आसान हो जाएंगे, इजी हो जाएंगी।
0: आप बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया। एज यूजुअल जब
1: जी,
0: आपसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, सीखने मिलता है।
1: आपका भी
0: और
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और टाइम दिया, और मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। और ये ऐसी चीज़ है कि जो ये टॉपिक कभी ख़त्म होता नहीं है, इसमें जितनी बात की जाए वो कम है, और इंशाल्लाह खुदा ने अगर मौका दिया तो फिर इस पे तफसीली गुफ्तगू होगी।
0: इंशाल्लाह
1: बहरहाल हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम किसी के
0: जी
1: बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी हो,
0: जी
1: इंशाल्लाह।
0: शुक्रिया बहुत बहुत
1: जी
0: आगा। और पीस एंड हार्मनी के साथ जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी तरबियत जो है, उसका
1: जी
0: मेन क्राइटेरिया ये है कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को इमाम मेहदी अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ से जोड़ सकें, और उसके
1: इंशाल्लाह
0: लिए शादी का पूरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है कि
1: चेंज
0: मुझे
1: होता है।
0: बच्चों की तरबियत वैसी करनी है, मैं खुद लड़ूंगी तो मेरा बच्चा कैसे बनेगा इमाम जमाना का
1: सही
0: सिपाही।
1: सही,
0: शुक्रिया बहुत बहुत। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, कमेंट करके बताइए। और अगर कोई टॉपिक्स हैं खास स्पेसिफिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि आगा अजीम शिराजी साहब पॉडकास्ट में आएं और जवाब दें, तो आप उसको भी, और कोई पॉइंट अगर आप अग्री नहीं करती हैं या करते हैं तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग उन पॉइंट्स को भी देख सकें और अगले प्रोग्राम्स में उसको एड्रेस कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।
2: अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयक अल फरज।